0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: अमित त्रिवेदी और जसलीन रॉयल की आवाज में लव यू जिंदगी फ्रॉम द मूवी डियर जिंदगी. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू द शो, राइट? यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दनीशा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर. अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान.
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल.
0: ओए हाय,
1: लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस.
0: जी, हर रोज हम ऐसे ही सुबह की शुरुआत करने वाले हैं विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एंथुजियाज्म एंड ऑल द गुड थिंग्स. यू नो व्हेन दे से ना कि आप जैसा सोचते हैं आप जैसा मैनिफेस्ट करते हैं वही आपके साथ होता है. एंड दैट इज सो ट्रू. हम सब ने अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की है पर मानते नहीं हैं ऑब्वियसली. यू नो कभी कभी ऐसे होते हैं कि सिचुएशंस ऐसी होती है लाइफ में कि पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन खुद को थोड़ा सा पुश करोगे ना तो हो जाएगा. यार इतना कुछ कर चुकी हो लाइफ में, ये छोटी मोटी दिक्कतों से कहाँ घबराने की जरूरत है यार.
1: तेरा यार हूँ मैं.
0: हाँ जी, आ गई हूँ मैं आपके साथ. अभी फिलहाल मुझे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का जो सिलसिला है वो शुरू कर दीजिए. काफी क्रेजी शो था, बट यार द लव फॉर हानिया आमिर एंड दैट गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई थिंक इट वाज बिलाल अब्बास मे बी, बट गुड शो फिर भी मैंने एंजॉय किया.

के बाद में साथिया टाइटल ट्रैक और उसके बाद आने वाला है ये बहुत खूबसूरत गाना। जब से ये मूवी आई है, ये गाना आउट हुआ है, लाइक मूवी मैं थिएटर में देखने गई थी, मैं वापस आऊंगा, एंड वहां पर मैंने थिएटर में ये गाना सुना है, लाइक कितना सुंदर गाना है ये, क्या कर दिया है ये। और आवाज दीपाली सहाय की इज आउट।

बहुत सुंदर लिरिक्स, बहुत प्यारी सुकून भरी आवाज, ये सब सुनेंगे हम इस घंटे में और ढेर सारी बातें करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस चाहिए मुझे. आज से एवरीबॉडी इज गोइंग बैक टू वर्क, तो यू नो आई नो कि इतना टाइम घर पे रहने के बाद दोबारा से ऑफिस जाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप कर लोगे मेरी जान, मुझे पता है. Sending Uchalamba Kadhi for you from the movie Welcome to the Jungle. Stay tuned and Jubindas Media.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह की आवाज में तेरा यार हूं मैं फ्रॉम द मूवी सोनू की टीटू की सिटी यार लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहां पर एंड एज आई सेड कि यू नो गुड मॉर्निंग मैसेजेस का जो सिलसिला है वो शुरू कर दीजिए आई हैव गॉट अ फ्यू मैसेजेस ओवर हियर नाजनी जी का मैसेज मेरे पहुंचने के पहले पहुंच चुका था दिल खुश कर देता है ये बात मेरी है सो कहती हैं बिगिन योर डे विद अ ब्राइट स्माइल डीप ब्रेथ्स पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पी थॉट्स गुड मॉर्निंग ब्यूटिफुल एंड दैट्स व्हाट आई सेड व्हेन आई केम राइट कि हर दिन की शुरुआत ऐसे ही करनी होती है यार पॉजिटिव थॉट्स के साथ एंड वो आगे कैसे टर्न लेते हैं हम कह नहीं सकते पर एटलीस्ट अपने माइंड में तो हम वो चीज़ कंट्रोल करके रख सकते हैं राइट देन शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है यहाँ पर टॉक टू समवन हु मेक्स यू हैप्पी बट नेवर मिस टू टॉक टू समवन हु फील्स हैप्पी टू टॉक टू यू एंड दैट इज सो सो सो ट्रू हम ना उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अनजाने में यू नो नॉट इंटेंशनली लेकिन जो हमारी लाइफ में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं बाय डिफॉल्ट जिनकी प्रेजेंस वहाँ है आपके बिना बोले वो आपकी हर लाइफ की सिचुएशन में हर दौर में आपके साथ होते हैं एंड समहाउ वी फील कि अरे ये तो है ही ये तो कहाँ ही जाएगा है ना एंड वी स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड पर ऐसे नहीं करना होता है जिन्हें आपसे आपके साथ रहकर आपसे बात करके खुशी होती है ना उन्हें तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जैसे कि मैं हाँ जी दिल खुश हो जाता है आपसे बात करके बता रही हूँ मैं साथ में अबरार जी ने एक बड़ी सुंदर सी लैंडस्केप की पिक्चर भेजी है विद अ गुड मॉर्निंग एंड यहाँ पे मुझे रमेश जी का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड क्या कर रहे हैं इस वक्त कहाँ से सुन रहे हैं गोइंग टू वर्क या फिर कहाँ जा रहे हैं बताइए मुझे 3311106 पर मैसेज करके लौट कर आऊँगी एक बहुत बढ़िया सी थॉट लेकर आई हूँ किलियन मर्फी का एक इंटरव्यू देख रही थी मैं एंड इट जस्ट स्ट्रक अ कॉर्ड विद मी तो आपसे शेयर करना तो बनता है मेरी जान कुछ देर में आती हूँ सुधरे रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: तनिषा
1: सरगम की आवाज में साथ क्या मूवी से टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं अपर एंड मैंने कहा था कि कुछ देर में लौट के आऊंगी एक बहुत बढ़िया ऐसे मोटिवेशनल थॉट लेकर आई हूँ मैं जो कि मैंने किलियन मर्फी के एक इंटरव्यू में देखा था सो आई हैव जस्ट कटेड उनसे इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप अपने 21 साल के सेल्फ को कोई यू नो 21 ईयर्स सेल्फ को कोई एक ऐसे एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या होगा तो आइए सुनते हैं
2: What would you tell yourself at 21?
3: Believe your instincts. Instinct over intellect. Always instinct. Just because you can rationalize it doesn't mean it's right. If you feel it, then it's right.
1: Exactly. And बहुत सही बात है यार. Whenever we are taking a big life-changing decision in our life, तो हमें अंदर से एक आवाज जरूर आती है. यार ये सही है. या फिर या क्या ये मुझे करना चाहिए जहां वो क्वेश्चन वाला थॉट आ रहा है ना वहां आपको रुकना पड़ेगा वहां आपको उसके ऊपर और थोड़ा सा थॉट देना पड़ेगा यू नो टेक एडवाइसेस फ्रॉम पीपल हु केयर अबाउट योर वेल बीइंग एंड जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे क्योंकि यूजुअली हम यही करते हैं हम अपने इंस्टिंक्ट अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर जाते हैं और दिमाग की सुन रहे होते हैं और दिमाग हमेशा हमें प्लीज करने की ही कोशिश कर रहा है वो कभी भी सही और गलत समझ नहीं पाता है वो सिर्फ वही समझता है जो आपने अपने ब्रेन में फीड कर रखा है दैट इज व्हाई वी से कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो योर ब्रेन विल कीप फाइंडिंग ऑल दोस पॉजिटिव थिंग्स टू मेक यू हैप्पी वो आपके लिए काम कर रहा है इट्स नॉट द अदर वे अराउंड हम उल्टे लूप में घुस जाते हैं कि यू नो मुझे मेरे दिमाग को शांत करना है तो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली मैं उसके उस हिसाब से काम करूंगा नहीं आपका दिमाग आपको शांत करेगा आपका दिमाग आपके लिए काम करेगा आप उसके लिए काम नहीं करते मेरी जान हाँ जी ज़ैन रहमान साहब की आवाज़ में एक बहुत सुंदर गाना मॉर्निंग को और भी बेहतर बनाने के लिए

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: किशोर दार लता दाई की आवाज़ में रॉकी मूवी से क्या यही प्यार है, ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड जिन्होंने संजू मूवी देखी होगी उन्हें इस गाने की बैक स्टोरी भी पता होगी, राइट। तनिषा के साथ है आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम पर, ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। अरे देखा, मुझे डर था, मैंने सुबह से जब भी शो शुरू किया ना आज बिंदास मॉर्निंग करना, आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं ऑल ऑफ रिचार्ज ना बोल दूँ, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है ना। सो दैट रिमाइंड्स मी कि आप सुदेव को मिस कर रहे होंगे, एंड सुदेव को अब आज से आप सुन पाएंगे ऑल ऑफ रिचार्ज में, और मुझे सुनेंगे आप बिंदास मॉर्निंग्स में। और फिलहाल वक्त हो चुका है
2: रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
1: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में जो आज मैं सवाल पूछने वाली हूँ वो काफ़ी फन और इंटरेस्टिंग है, और मुझे ऐसे मेरे चाइल्डहुड में ले गया है वो, लेकिन इट इज़ वेरी फेमस राइट नाउ ऑल्सो, तो बच्चों को भी पता होगा और बच्चों के मम्मी पापा को भी पता होगा। सो द क्वेश्चन इज, देयर इज दिस डिज्नी कैरेक्टर जिसके स्टोरी लाइन में एक ये नोशन रहता है कि अगर वो झूठ बोले तो उसकी नाक लंबी हो जाती है, और यही चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हम पे भी एप्लीकेबल कर दी थी। मुझे कहा गया था कि बेटा झूठ बोलोगे ना तो आपके जो ईयर हैं वो रेड हो जाएंगे और ऐसे वार्म हो जाएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस डर से कभी झूठ बोला नहीं। आपने मुझे उस कैरेक्टर का नाम बताना है जो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर। ऐसा डिज्नी कैरेक्टर जिसकी नाक लंबी हो जाती है जब वो झूठ बोलता है। अभी भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी यहाँ बैठ के इंजॉय करने वाली हूँ। एब्सोल्युटली इन लव विद दिस ट्रैक, दीपाली सहाय की आवाज में तेरे पास मैं वापस आऊंगा मूवी से। स्टे ट्यून्ड, बिंदास।

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. पैपॉन और मनाली ठाकुर की आवाज में मोह मोह के धागे दम लगा के हर्षा मूवी से कितने सुंदर गाने लाइंड अप है यार आज, मतलब एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाना. एवरी अदर सॉन्ग इज कमिंग इन आई एम लाइक अरे ये तो बहुत प्यारा है, ये भी तो मेरा फेवरेट है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. सो ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में आज मैंने एक डिज्नी कैरेक्टर से रिलेटेड सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन वाज कि ऐसा कौन सा एक डिज्नी कैरेक्टर है जो कि जब झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है. एंड बचपन में वी ऑल हैव बीन देयर राइट, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा लाए सा बना के बोल दिया था कि बेटा झूठ बोलोगी ना तो तुम्हारे कान लाल हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो. दैट्स व्हाट माय मदर यूज्ड टू डू विद मी. आपके साथ क्या होता था वो शेयर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जवाब की बारी है. सो सबसे पहले संधू जी का मैसेज पढ़ते हैं, उन्होंने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है. गुड मॉर्निंग जी, आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक एंड प्रोडक्टिव डे. हरपाल संधू, थैंक यू सो मच संधू जी, विशिंग यू द सेम, हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ. और उन्होंने आंसर दिया है कादर खान. नहीं, इट्स अ डिज्नी कैरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अ मूवी. लो दो इट इज अ मूवी बट अ कैरेक्टर, अ कार्टून कैरेक्टर. पर यहाँ पे मुझे अलीना का मैसेज आया हु इज 8 years old एंड शी सेज कि माय फादर आल्सो टेल्स मी दैट इफ आई विल लाई माय नोज विल बिकम बिग. And the Disney character you're talking about is Pinocchio. And now I know that my father was making up stories. Okay, I should say sorry to Alina's father though. But yeah, the correct answer is Pinocchio. Thank you so much, darling. Love this one, yeah. उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले. Do you not realize कि मोहित चौहान थोड़े underrated है, मतलब yeah he get the you know all the praises he deserves, पर मुझे लगता है कि enough नहीं मिल रहा है, वो और ज्यादा deserve करते हैं यार. बैठा इधर आस में मैं तेरी क्योंकि तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा. आसिफ असर की आवाज में ये बैंगर और साथ में शाहरुख खान भी आ रहे हैं. अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली फेंकता साला. हां जी, ऑल दीस ट्रैक्स आर कमिंग योर वे. फिलहाल सुनते हैं मोहित चौहान और नरगिस तेजी की आवाज में इश्क मस्ताना फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: वो पाट दे तूड़ा।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
2: बिंदास। जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on old gold exchange. And

0: in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: तनिषा
1: जनता गांधी और अमित त्रिवेदी की आवाज में डिशो मूवीज से सौ तरह के रोग ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है थोड़ा सा वेदर अपडेट हो जाए. वैसे अपडेट हो के ये और ज़्यादा ह्यूमिड हो चुका है और यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे वाज़ टू क्रेजी भाई. कितना फॉगी था, कितना ह्यूमिड और मिस्टी था, मतलब आप बाहर निकलने का सोच नहीं सकते किसी भी टाइम पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पर निकलना तो पड़ता है. देखो ऐसे थोड़ी चलता है जीवन. टुडे राइट नाउ द टेम्परेचर इज 33 degrees. व्हाट इज रॉन्ग विद मी. एंड बढ़ के ये 44 तक भी हो सकता है. इट फील्स लाइक 40 दो. हाँ राइट नाउ इट इज 33 बट इट फील्स लाइक दैट. एंड ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मिस्टी और फॉगी वेदर रहने वाला है बिकॉज यू नो द अल हना स्टार पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. सो यू नो ऑल द पीपल हु आर ड्राइविंग बी वेरी केयरफुल. यू नो अपना फोकस रोड पर ही रखिए, फोन्स वगैरह यूज़ मत करिए वाइल ड्राइविंग. यू आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जान, तो इस बात का ख्याल रखा कीजिए. एंड देर आर पीपल हु लव यू, हु केयर अबाउट यू, तो उनके लिए आपका अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. समझ रहे हो बात को? हाँ जी. फिलहाल भेज रही हूँ ज़बरदस्त हिट योर वे मोहित चौहान की आवाज़ में रॉक स्टार मूवी से. एंड यहाँ पे मुझे नदीम जी का मैसेज आया है. हाय आई एम लिसनिंग फ्रॉम सऊदी. हाय नदीम जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एंड हाउ इज़ द वेदर देयर. कतर का तो हमें पता चल गया, आप सऊदी का ज़रा हमसे शेयर कर दें. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जी ओ बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Live, 106.3 FM, Gio Bendaz. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

0: तनिषा।
1: शाहरुख खान और हेमा सरदेसाई की आवाज में अपुन बोला तुम मेरी लैला, वो बोलता है फेंकता है साला। आई लव दिस ट्रैक एंड द वे शाहरुख खान इज सो हिमसेल्फ इन दैट, बहुत ही मजा आ जाता है सुन के। एंड अगर वो नहीं मान रही है और ऐसे बोल रही है कि फेंकता है, तो थोड़ा यू नो कन्विंस करने की कोशिश करो। जब भी मैट देखो करीना कपूर से सीखोगे। तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। और वेलनेस फिक्स में आज मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। जब भी आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, वो एकदम से आ जाता है, हम समझ नहीं पाते कि करें तो क्या करें, उसे कंट्रोल करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द फिजियोलॉजिकल साय। यस, सांस लेनी है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। टू क्विक ब्रेथ्स आपको लेनी है थ्रू योर नोज और उसे एक्सहेल करना है अपने माउथ से, और इसे 2-4-5 बार तक यू नो रिपीट करो इस प्रोसेस को। टू क्विक ब्रेथ थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। और इससे बेसिकली क्या होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा और वो कामर हो जाएगा, एंड देन यू विल ऑल्सो हैव अ स्पेस इन योर हेड। आप रियलाइज करोगे कि आई डू नॉट नीड टू स्ट्रेस और बी एंग्शियस ओवर दिस, बिकॉज इतनी बड़ी बात है नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर सकती हूँ, यू नो वो चीज़ आपको रियलाइज होगी एंड थिंग्स विल बी ओके मेरी जान। हाँ जी, फिलहाल भेज रही हूँ लख लख नखरे श्री नीरज श्रीधर की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
2: Terms and conditions apply.
1: Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
4: इन एसोसिएशन विद।
3: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
5: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
3: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
6: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
7: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
6: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
9: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड आई गॉट अ फ्यू मैसेजेस ओवर हियर. साजिद जी का मैसेज आया है मुझे. हैव अ नाइस डे. गुड मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग. हाँ जी, विशिंग यू द सेम साजिद जी. अलॉन्ग विद दैट मुझे मोहम्मद अमर का मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग तनीषा जी, आई मिस योर वॉइस फ्रॉम वन वीक. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एंड देखो, आपने याद किया हम आ गए. आई होप यू आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग आमिर जी. एंड यहाँ पे मुझे तीर्थ प्रसाद जी का मैसेज आया है. और सुदेव नहीं, आज तनीषा आई है. और आज से रोज तनीषा को ही सुनेंगे आप बिंदास मॉर्निंग्स में. सुदेव को सुनने के लिए आपको दोपहर 2 बजे ट्यून इन करना पड़ेगा. वो आएंगे ऑलिव रिचार्ज में आज से. अलॉन्ग विद दैट, जो थर्ड पाकिस्तानी मैंगो एग्जिबिशन था, इट कंटिन्यूज ऑन सूक वाकिफ 20th July. दैट इज स्टिल Tomorrow it is on. तो अगर आप नहीं गए हैं अभी तक तो जाइए, चेकआउट कीजिए. एंड मैंगो सीजन ओवर हो जाए उससे पहले इन मैंगोज का लुत्फ उठा लीजिए मेरी जान. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: See, these exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Salam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff.
3: Jackie Shroff.
2: Radio 106.3. Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm a number one.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
7: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: You're listening to Radio 106.3 FM, the Nisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और सुनीति चौहान की आवाज में यार हम सुना आपने व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक नहीं और बात करते हैं फीफा की जिसका आज होने वाला है फिनाले
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
3: Your trusted remittance partner.
0: देखो फाइनल तो आज होने वाला है पता है हमें एक्साइटेड हैं स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के लिए लेकिन उससे पहले बात करेंगे थर्ड प्लेस प्लेऑफ की जो कि हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जिसमें इंग्लैंड ने बाजी मार ली फ्रांस का जो ये थ्रिलिंग एनकाउंटर था मायामी स्टेडियम में हुआ विद इंग्लैंड एंड यू नो इट वॉज सच अ फिल्मी आई वुड से मैच बिकॉज यू नो फर्स्ट हाफ में लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा देन सेकेंड हाफ में बाजी पलट गई एंड देन इवेंचुअली इंग्लैंड वन लेकिन जो ब्रिलियंट दिखाई है फ्रेंच कैप्टन किलियन एम्बापे ने दैट वाज स्टनिंग सेकंड हाफ में जो उन्होंने बाजी पलटी है दैट वाज अमेजिंग एंड जितने भी फीफा फैंस हैं दे वेंट क्रेजी ओवर इट अलोंग विद दैट ही हैज बिकम द ऑल टाइम वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर सो फार एंड दैट इज सच अ ह्यूज थिंग दो फ्रांस डिड नॉट वन बट जो कमाल खेला है उन्होंने इट विल बी एच्ड इन द हिस्ट्री कुछ देर में लौट के आऊंगी एंड वी विल टॉक अबाउट द फाइनल विच इज गोना हैपन टुडे 10 PM स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना सबकी जर्सीज तो रेडी है ना और डिसाइड कर लिया ना किधर जाना है मैच वैच देखने करते हैं बात स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
5: Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool song of the

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात एप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

शंकर महादेवन की आवाज में कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, ये जो फीफा की मैडनेस है ये फिर भी कम नहीं होगी। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, तनिष आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं।

0: In association with...
1: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
1: Your trusted remittance partner.
3: आज का जो फाइनल है क्रेजी होने वाला है बिकॉज एक तरफ तो यू नो मास्टर लाइनल मेसी इज देयर एंड देन दूसरी तरफ बहुत ही फ्यूलेसली अटैक करने वाली जो ये टीम न्यू जनरेशन स्टार्स के साथ है स्पेन एंड ऑल्सो यू नो यू ऑल हैव सीन दैट पिक्चर वेयर मेसी एंड बेबी यमाल इज देयर और साथ में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि भाई ये तो सब प्लान था यू नो मेसी का उस टाइम पे जर्सी नंबर जो था वो 19 था एंड यमाल वॉज अ बेबी एंड देन नाउ ही इज वेयरिंग द जर्सी नंबर 19 एंड इट इज 19th ऑफ जुलाई और आज है फिनाले सो स्पेक्युलेशंस आर देयर बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड यू नो फॉर ऑल द फैंस The fans of Argentina and the fans of Spain. दोनों के लिए अपनी टीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जोर से गुड लक है सबको एंड देर आर सो मेनी प्लेसेज यू कैन गो एंड वॉच द मैच लाइव विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और क्या वाइब होती है यार आई जस्ट वॉच्ड वन मैच जो कि फ्रांस और मोरक्को के बीच में हुआ था एंड द वाइब वॉज क्रेजी इतना मजा आया था मुझे वहां लाइव देख के आई नो ऑल द एंथुजियाज्म एंड द एनर्जी देयर जहां पे सारे फैंस इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे होते हैं अलग ही लेवल की होती है सो कहां जा रहे हैं क्या प्लान्स है बताएं मुझे शेयर कीजिए मुझसे 3311063 पर you never know we might meet there. So there you read all of Jio Bindas.

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव.
3: In association with
2: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
2: your trusted remittance partner.
5: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

0: Tanisha. जुल्फी और फारिश शफी की आवाज में ब्लॉकबस्टर ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. So, आज है इंटरनेशनल कैरियोके डे. जी, वी ऑल लव टू डू दैट, है ना. हम सबको गाना पसंद है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सब सुरीले हो, जैसे मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे गाना बहुत पसंद है. एंड कैरियोके इज दैट वन एक्टिविटी जो कि यू नो सारी इनहिबिशंस को छोड़ के यू हैव टू जस्ट गेट इन टू इट. अगर आप उसको इन्जॉय करना चाहते हैं दिल खोल के, यू नो यू वॉन्ट टू परफॉर्म देयर. सो वी गोना टॉक कि ये कैरियोके एग्जैक्टली आया कहाँ से. So it originated in Japan 1970s में. और वो कहते हैं ना कि necessity is the mother of invention. Same, वही चीज़ हुई है. बहुत ज़ोर से necessity थी कि you know live musicians के बिना लोग अपने favorite गाने खुद live गा कर perform कर सके, you know enjoy कर सके, jamming कर सके. There was this musician called Daisuke Inui. कोबे करके एक जगह है जापान में वहां पर. एंड उन्होंने देखा कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एक कैफे में बैठे हैं एंड दे वांट टू डू दिस, यू नो दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू सिंग एंड एंजॉय, लेकिन हर वक्त म्यूजिशियंस अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हेन ही केम अप विद द आइडिया कि क्यों ना मैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स लेकर आता हूँ एंड लोग उस पर खुद लीड वोकलिस्ट बन सकते हैं, खुद गा सकते हैं अपने हिसाब से. एंड दैट्स वेयर ही केम अप विद द आइडिया ऑफ कराओके. दो उन्होंने कोई भी इसका पेटेंट फाइल नहीं किया, बट एवरीबडी नोज दैट Daisuke Inoue वॉज द वन जिन्होंने कराओके को इन्वेंट किया. देन इवेंचुअली 1980s में जाकर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एंड जापान के बाहर भी इसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली. एंड राइट नाउ तो भाई No matter what party you're having, आप घर पे हाउस वार्मिंग कर रहे हैं, आप कहीं बाहर चले जाए, everywhere karaoke is one thing जो सबको जोड़ देता है एक साथ. Because music has that power, वो आपको emotions जिस तरह से feel करा देता है. And then when you're singing that, you feel like अरे ये तो मेरे लिए ही बना है यार, types वाली feeling, you know. So yeah, that's how karaoke came into existence. Now I want to know, we all have been to karaoke parties, even if we have not been to those parties, वहाँ पे eventually karaoke हो जाए आता है. तो ऐसा कौन सा गाना है आपका गो टू गाना जो कि अगर कभी भी आपको माइक देके खड़ा कर दिया जाए कि गाओ तो यही गाओगे, ये जानना चाहूंगी मैं. गाकर भेज दोगे तो और भी मजा आ जाएगा. 3311106 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दो 4444106
1: पर. Song of the Hour. Yeah, gun.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: दस मॉर्निंग, हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज में राब्ता मूवी से मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। एंड यस्टरडे नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए एंड 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स के जो विनर्स हैं, पॉपुलर फिल्म जो है वो मिला है कल की 2898 AD को। इफ यू हैवंट सीन इट, ओ माई गॉड, लार्जर देन लाइफ मूवी, डू वॉच इट, मजा आ जाएगा देख के। बेस्ट हिंदी फिल्म जीता है राजकुमार राव की मूवी श्रीकांत ने। एंड बेस्ट फीचर फिल्म इज आर्टिकल 370। दिल खुश हो गया था वो मूवी देख के। यामी गौतम को ना ये रोल्स बहुत सूट करते हैं। एंड ऑन दैट नोट, यामी गौतम हैज वन बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्टिकल 370। अलॉन्ग विद दैट जो बेस्ट एक्टर है वो शेयर किया गया है दो लोगों के बीच में, एक है मामूटी एंड द अदर वन इज कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन। एंड बेस्ट डायरेक्टर मिला है राजकुमार पेरियासामी फॉर अमारन। आई हैव वॉच दिस मूवी एंड आई लव्ड इट एंड आई क्राइड लाइक एनी थिंग जब मैंने ये मूवी देखी थी। बहुत सुंदर मूवी है, डू वॉच इट इफ यू हैवंट सो फार। एंड या दीज आर द 72nd नेशनल अवार्ड विनर्स। बहुत सारी बधाइयाँ। एंड दीज मूवीज, यू नो, द श्रीकांत, चंदू चैंपियन एंड अमारन, इफ यू हैवंट, डू वॉच देम। कल की ऑल्सो, यस, दे आर माइंड ब्लोइंग। फिलहाल भेज रही हूँ माइंड ब्लोइंग गाना बंधु 2.0 from the movie Cocktail 2. Stay tuned, Andrea Bindas, maybe Jen.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: तनिषा
1: बीवी नंबर वन से अनुराधा और अभिजीत की आवाज में चिनरी चुनरी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारी यू नो सीरियस बातें भी हो गई, स्पोर्ट्स की बातें हो गई, कतर में क्या चल रहा है उसकी बातें हो गई. अब वक्त है थोड़ा सा चिल करने का और मे बी या आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या होने वाला है इससे. जी यू नो लेम जैम्स का सवाल पूछे बिना मुझे रहा नहीं जाता है, वेदर इट इज आफ्टरनून और इट इज मॉर्निंग, ये तो होगा ही मेरी जान. सो आज का जो सवाल है लेम जैम्स का वो ये है कि एक सुंदर लड़की चाय पी रही हो तो उसे क्या कहेंगे. एक सुंदर लड़की अगर चाय पी रही हो तो उसे क्या कहेंगे, ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. एंड कुछ देर पहले जब मैंने कराओके डे की बात करी थी एंड मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा गो टू गाना है कि आपके अगर हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए तो यही गाना सबसे पहले आपकी जुबान पर आएगा, तो मुझे यहाँ पर जवाब आए हैं. एक ने कहा है लड़की बड़ी अनजानी है, ओह. एंड दूसरा गाना जो मुझे यहाँ पे मैसेज किया गया है वो है बड़ा ही ऐसे दर्द भरा गाना है जोश मूवी का, हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे. अरे पर गाना बहुत सुंदर है और ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत लगी है उसमें, क्रेजी भाई. और भी अगर कोई गाने हैं आपके जहन में तो ज़रा शेयर कीजिएगा मुझसे. फिलहाल मुझे जवाब दीजिए कि एक सुंदर लड़की चाय पी रही हो तो उसे क्या कहेंगे. 3311063 पर सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

0: तनिषा
1: अलका याग्निकर कमाल खान की आवाज में यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. मैं ऑलमोस्ट ऑलिव रिचार्ज बोलने वाली थी फिर मुझे याद आ गया कि नहीं अभी तो सुबह ही हुई अभी तो 9:30 ही बजा है जी. एंड मैंने पूछा था आपसे लेम जैम्स का सवाल कुछ देर पहले लेकिन नहीं आ पा रहा है. सुंदरी क्या जवाब होता है क्वेश्चन था कि एक सुंदर लड़की अगर चाय पी रही हो तो उसे

क्या कहेंगे, सुंदरी कह देंगे, इसमें चाय का जिक्र कहाँ हो रहा है, ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा मतलब ऐसे वर्ड आना चाहिए ना, चाय शुड बी देयर और टी शुड बी देयर, लाइक इससे ज़्यादा हिंट क्या दूँ। मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया है मुझे और ऑलमोस्ट सही जवाब है, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरा जवाब कुछ और था, ये जो इन्होंने जवाब दिया है ये दूसरा आंसर मिल गया है मुझे जो कि सही निकल के आ रहे हैं, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन एक और मौका दे रही हूँ आपको, आप मुझे बताएं कि एक सुंदर लड़की अगर चाय पी रही हो तो उसे क्या कहेंगे, उस वर्ड में टी आता है, टी है। 3311063 पर मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया है कम खान साहब का, क्या आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है, अरे अरे हैप्पी बर्थडे, इट इज कमरुद्दीन खान विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड एकदम बढ़िया सा आपका दिन जाए, आपको फुल ऑन ऐसे पार्टी वार्टी कीजिए और सारी आपकी विशेस पूरी हो जाए, यही उम्मीद करती हूँ, यही प्रे करती हूँ आपके लिए। और फिलहाल आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, 3311063 पर।

0: मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। Commercial Bank. Save and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और मैंने लेम जैम्स का सवाल पूछा था और मुझे यहाँ पे कुछ जवाब आए हैं. नए जवाब भी मिल गए बाय द वे मुझे, लेकिन एकदम नया जवाब लेकर आई है कशिश मैडम स्टूडियो में. वेलकम.
2: थैंक यू.
1: गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग. एंड कैसा लगा सुबह सुबह उठ के?
1: पुरानी यादें ताजा हो गई.
2: वक्त लगेगा. इतना बढ़िया लगा कि मैंने इंस्टाग्राम खोला है, रेडियो ऑलिव का पेज मैंने खोला है और इतनी खूबसूरत चीज मुझे सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे दिख गई. ओ माय गॉड, मजे आ गए.
1: आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दिस. ओके
2: ओके. कई कुछ चीजें जो है दिल से कही जाती है.
1: ओ माय गॉड,
2: हर चीज का पैसे का मोल नहीं होता है. आप ऐसे खुशी खुशी मुझे खाना खिला.
1: देखा, मैं बोलने लगी थी कि कुछ ना कुछ तो काम निकल के आएगा. हाँ तो बताएं, लेम जेम्स का जो मेरा सवाल पूछा ना, ये भागती हुई अंदर आई कि मेरे पास जवाब है. जब आप ऑन एयर जाओगे तो मुझे बुला लेना.
2: यस.
1: सो द क्वेश्चन वाज कि एक सुंदर लड़की चाय पी रही हो तो उसे क्या कहेंगे?
2: तनिशा कहेंगे यार गाइस. और क्या कहेंगे? मतलब मैं जो है ये जो व्यू है हर रोज अपनी डेस्क से देखती हूँ कि ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरती से, इतनी मतलब इतने प्यारे तरीके से वो चाय कैसे पी सकता है.
1: ठीक है,
2: मैं तो पीती हूँ. लोग बोलते हैं कि भाई मत पी यार.
1: That was actually मेरे सवाल से ज्यादा lame इस लड़की का आंसर था. But the correct answer is pretty.
2: That's you. That's a synonym. मैं Google पे पता है, मैं Google पे सुंदर, pretty, खूबसूरत, unique कुछ भी डालू तनिशा आ जाता है लिखा हुआ. So, मुझे सीधे Instagram पे ले जाता है इनकी. So बस
1: ठीक है, नहीं मिल रहा है खाना, ठीक है बस करो.
2: सांबर वड़ा.
1: फिलहाल मैं सिर्फ स्टूडियो दे सकती हूँ क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो गया है. आप मिलेंगे कल सुबह 6 बजे. हाँ जी. और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. स्टे हाइड्रेटेड. बहुत ही हॉरिबल वेदर हो रखा है एंड काफ़ी ह्यूमिड है और मिस्टी भी है. सो वाइल ड्राइविंग ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मेरी जान. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. जियो बिंदास.

सोनू निगम मलका याग्निक की आवाज में ये अमेजिंग ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफ पर. वेलकम जी एंड गुड मॉर्निंग. मैं हूँ आपकी कसुशन शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड यार देखो, अगर मैं बात करूँ मेरी खुद की, तो मैं जो है अपने जो है दिए हुए प्रवचनों पर, अपनी दी हुई बातों पर जो मैंने आपको बताई है उन पर जो है खुद अब चलना शुरू कर चुकी हूँ. मतलब हम बात कर रहे थे ना कुछ दिनों पहले, यू नो, डोपामाइन ड्रेसिंग की, कि यार अपनी फेवरेट पॉप कलर्स पहनो, अपनी फेवरेट एक्सेसरीज पहन के आओ. सो ये पिछले दो तीन दिनों से मैं कर रही हूँ एंड ऑफिस में रियली मेरा मन लग रहा है. वरना मुझे जो है ऑफिस आते ही मतलब घर जाने का मन करता था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ. काम बहुत सारा होता था लेकिन करने का मन नहीं करता था. लेकिन अब फाइनली जब आप हैप्पी कलर्स पहनते हो, जैसे येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल या आपका कोई भी फेवरेट कलर, तो आपको जो है अच्छा अच्छा फील होने लग जाता है एंड आप कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो. सो आज मैंने येलो कलर पहना है. आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं ये आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर, कि यार आखिर आप जो है डोपामाइन ड्रेसिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और ऐसा कौन सा कलर है जो आपकी मूड को अपलिफ्ट कर देता है कि यार कशिश देखो मैं तो ये कलर के कपड़े पहनता हूँ, या ये कलर जो है अपने एक्सेसरीज में ऐड कर देता हूँ, ये कर देती हूँ तो मेरा जो है दिन बेहतर जाता है, या मुझे ऑफिस में काम करने का मन करने लग जाता है. खैर देखिए, इसी बातों को जो है जारी रखते हुए लाइफ मस्त है शो की जो है शुरुआत हम कर रहे हैं एक अमेजिंग वाला गाना कॉकटेल 2 मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. जरा ये गाना जो है इंजॉय करके आओ, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे मौसम की वाइब को एंजॉय करते हुए. वैसे तो हो नहीं रही एंजॉय करने वाली, लेकिन फिर भी आप, मैं और रेडियो ऑल साथ है तो एंजॉय कैसे ना करें यार, हम बताओ अभी. सो ये गाना एंजॉय करके आओ, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: दानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर.
3: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:14. दैट्स 10:14. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे.

0: पल पल दिल के पास एंड मूवी का नाम भी पल पल दिल के पास। अब देखिए यार, कई बार ऐसे होता है ना कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और किसी का नाम जाके सर्च करते हो एंड आपको उस सेम नाम से एक इंसान मिल जाता है एंड आप जब क्लिक करके देखते हो तो वो कोई और इंसान होता है। बस सेम चीज जो है इस गाने के साथ भी होती है। जब आप जो है दादाजी का गाना सर्च करते हो पल पल दिल के पास कि ओ माय गॉड पुराना वाला पल पल दिल के पास आ जाएगा और अचानक से ये गाना प्ले होने लग जाता है, फिर जो आपको फीलिंग आती है वही फीलिंग मुझे भी आई थी। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यू नो, मतलब मैंने सोचा था कि यार वो पुराना वाला जो पल पल दिल के पास है वो सुनेंगे हम, लेकिन फिर ये गाना प्ले हो गया एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरिजीत सिंह ने कितना बेहतरीन गाना गाया है एंड ये गाना भी बुरा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा गाना है। सो पल पल दिल के पास गाना आपके रेडियो सेट्स पर आपने इंजॉय किया। अब जो है लाइफ मस्त है शो पर वक्त हो गया है मौसम का, यू नो मामला जानने का कि आखिर मौसम कैसा हुआ है। अब देखिए, ये बताने की बात कोई है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि ऐसा मौसम हो रहा है कि आप जैसे ही बिल्डिंग के बाहर कदम रखो आपको ऐसा लगता है कि आपने बाथरूम के अंदर कदम रख दिया। हाँ, वो होता है ना कि यार आपने जो है अभी अभी बाथरूम में एक यू नो गरम गरम शार लिया है एंड उसके बाद जो है हर आईने पर, हर शीशे पे, हर मिरर पे या जितनी भी कांच की चीजें उस पर एक फॉग सा जम गया है। बस वैसी ही फीलिंग आती है जैसे ही आप बाहर कदम रखते हो। मेरे साथ तो देखो अभी यही चल रहा है। मैं जो है अगर कार में ट्रैवल कर रही हूँ या जैसे अगर मैं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ, मॉल में हूँ या ऑफिस से ही बाहर निकल रही हूँ तो मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाहर निकलती हूँ, फ्रेश फ्रेश। और जैसे ही मैं पैर बाहर रखती हूँ मेरे चश्मे पे जो है एक लेयर जम जाती है जिसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। सो ह्यूमिडिटी का जो हाल है वो कुछ इस तरीके का है। टेम्परेचर बता देती हूँ, इस वक्त दोहा में 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इस वक्त हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो आज का 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ह्यूमिडिटी बहुत सारी होने वाली है तो देखिए पानी जो है वो आपको पीते रहना है, हवा जो है वो ज़्यादा बहेगी नहीं आज, मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से हवा बह रही थी लेकिन आज जो है थोड़ी धीमे धीमे बहेगी। सो हवा का कोई टेंशन नहीं है, बाल उतने ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे हवा से, ह्यूमिडिटी से खैर ख़राब हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, देखो काफ़ी सारे लोग ना मुझे मैसेज करते रहते कि यार कशिश टेम्परेचर जो है वो हमारे यहाँ तो इतना हो रहा है, पर मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो लैपटॉप है, सब तीनों जगहों पर दोहा का टेम्परेचर इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। अगर आपके यहाँ कुछ डिफरेंट है तो देखो ये जो है जगह जगह पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स कितनी है या आसपास जो है माहौल कैसा हो रहा है, इसीलिए मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि दोहा में इस वक्त टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है जहाँ पे करंटली मैं मौजूद हूँ। अब देखिए इस गर्मी से डील करने का मुझे तो एक ही सोल्यूशन नजर आता है, वो है कूल सॉन्ग ऑफ द आर। सो कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, उसके बाद अगर तुम साथ हो गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। सो ये गाना एंजॉय करके आइए और मेरे साथ साथ आगे बढ़िए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

रैंडम मूवी से ट्रैक मिथवा आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो अलिफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड लगान मूवी में जितना क्रिकेट गांव वालों को आता था उतना ही जो है मुझे फुटबॉल के बारे में पता है कि देखिए ये जो गेम है इसमें एक गेंद होती है और दो गोल पोस्ट होते हैं, दो टीम होती है और ये एक दूसरे के गोल पोस्ट में इन्हें बॉल मारनी होती है. बस इतना ही पता है मुझे. एंड अब धीरे धीरे कतर आने के बाद जब मैंने इतना यू नो फुटबॉल फैंडम देखा है तब मुझे रियलाइज हुआ है कि यार ये तो कितना ऑसम गेम है, इसके बारे में तो और जानना चाहिए. एंड मैंने जानने की कोशिश की लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गई. फाइनल आ रहा है. कोई बात नहीं. लेकिन आज जब मैं ऑफिस के लिए जो है अपने ऑफिस की वैन में बैठी एंड मेरा जो कलीग है वो मुझसे पूछ रहे थे कि कशिश विच टीम आर यू सपोर्टिंग, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो. एंड आई सेड बैंगलोर नहीं होती. ओके इंडिया नहीं कशिश, आज फाइनल है. तो या जोक्स अपार्ट, ये सब मैंने उन्हें इरिटेट करने के लिए किया था क्योंकि फुटबॉल फैंस को अगर आप इरिटेट करो कोई यू नो अननेसेसरी का फैक्ट बता के तो यार बहुत मजा आता है. आप एक बार ट्राई करके देखना. थोड़ा सा यू नो वो आपको जज करेंगे, थोड़ा सा यू नो एक अजीब सा फेस बनाकर आपको देखेंगे. लेकिन कोई बात नहीं, आप डटे रहना, इरिटेट करना हमारा यू नो कर्तव्य है. खैर एक बहुत ही अमेजिंग खबर जो है वो कतर वासियों के लिए आ चुकी है. कतरी रेफरी जो है वो आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में यू नो मैच को VAR ऑफिशियल की तरह जो है वो देखने वाले हैं. सो बहुत मज़ा आने वाला, एक बहुत बड़ा मोमेंट है ये कतर के लोगों के लिए. सो कंग्रेचुलेशंस उनको. यार देखो हम फाइनल में नहीं है तो क्या हुआ, फाइनल यू नो जज करने का मौका मिल रहा है हमें, हमारे रेफरी वहाँ पर हैं, बस यही काफ़ी है. सो देखो मेरा जो प्यार है वो तो फुटबॉल से जो है इस साल इम्पॉसिबल सा रह गया. लेकिन एक बार जो है मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट फीफा तक मैं एकदम फुटबॉल प्रो बन जाऊँ. तो तब तक आप प्यार इम्पॉसिबल गाना जो है प्यार इम्पॉसिबल मूवी से विशाल दुदलानी की आवाज़ में इंजॉय करके आइए. मैं ज़रा थोड़ा और फुटबॉल के ना इस फाइनल के बारे में पढ़कर आती हूँ. मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: गाने का नाम फाइंडिंग हर, और अगर आप उस हर को ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज यहाँ खत्म होती है, क्योंकि वो आपकी फेवरेट हर यानी मैं शी आ चुकी हूँ यहाँ पर शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर। मैं हूँ आपकी कशिश। गुड मॉर्निंग पीपल। नहीं सुना नाम तो फिर से बता देती हूँ, मैं हूँ आपकी कशिश, शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ आपके लिए 106.3 रेडियो ओलिवर। और ये वक्त हो गया है आपको स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने का। अब देखिए यार, हर रोज मैं अपने शो पे कोशिश करती हूँ कि आपको एक ऐसा फन तरीका जो है बताऊं जिससे आप अपना स्ट्रेस कम कर सको। अब अक्सर क्या होता है कि स्ट्रेस कम करने के लिए हम काफी ऐसे तरीके अपनाने लग जाते हैं जिससे हमें और स्ट्रेस होने लग जाता है कि यार इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस कम क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ उन छोटे मोटे स्ट्रेस की जो हमें लाइफ में हो जाते हैं, कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, डेडलाइन आ रही है, या फिर गिफ्ट क्या दूं, जो है किसी की एनिवर्सरी आ रही है, या बर्थडे भूल गया मैं अपने पार्टनर का। ऐसे जो छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं, इनसे डील करने के लिए जो है आप क्या ऐसी फन चीजें हैं जो कर सकते हो जिससे आपका मन जो है भटक जाता है थोड़े टाइम के लिए, एंड आपको यू नो एंशियस फील होना कम हो जाता है। सो इन तरीकों पे हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं, एंड मैं जो है इन तरीकों के लिए डॉक्टर्स के पोस्ट पढ़ती हूँ, उनके यू नो एक्स पर जाकर उनके ट्वीट्स पढ़ती हूँ, एंड फिर जाकर उन पर रिसर्च करती हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपने AI से यू नो चैट GPT से पूछा कि यार आप मुझे बताओ चैट GPT कि एक तरीका क्या है फन जिससे हम हमारे एंजाइटी को कम कर सकते हैं या स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कोई फनी तरीका बताना, कोई फन तरीका बताना। एंड आई किड यू नॉट, सच में दूसरा तरीका जो था वो था कि शाहरुख खान की मूवीज देखकर स्ट्रेस कम होता है। बस इसी तरीके के लिए आई थिंक मैं ये सेगमेंट कर रही थी कि कोई मुझे बस ये बता दे कि यार शाहरुख खान की मूवीज जो है वो हेल्थ के लिए बेनिफिट देती है। अब देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, ये चैट GPT ने मुझे बताया, AI ने मुझे बताया, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये रिसर्च आई ही होगी। अब मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ था कि जब आप किसी एक अलग जॉनर की मूवी देखते हैं, मतलब क्योंकि शाहरुख खान ने इतने सारे अलग अलग जॉनर्स में मूवी की है, सो आप कोई अपना फेवरेट जॉनर उठा सकते हैं शाहरुख खान की मूवी से, एंड आपको फील गुड होगा। सो बस आज हम यही बात कर रहे थे कि यार देखो, शाहरुख खान की मूवीज देखने से स्ट्रेस तो कम होता है। आपने कौन सी शाहरुख खान की ऐसी मूवी देखी है जिससे आपका स्ट्रेस जो है थोड़ा सा ऐसे गायब हो गया है? वो बताइए। थोड़ी सी देर बाद जो है मैं भी आकर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ऑलिव अपडेट्स एंजॉय करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड रहिए। और फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। तबाही गाना टॉक्सिक मूवी से नया नवेरा है विशाल मिश्रा की आवाज में, एंजॉय कीजिए।
1: Song of the Year. Yeah, guys.

0: Trek. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. सो इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10 एंड इट्स 10.
0: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस. With pride, Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Hi everyone, this is Benny Deol here. Benny Deol here.
3: Olive Radio 106.3.
2: Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: ओके गाइस, मुझे रंगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे रंग सकते हैं अपने रंग में, लेकिन अगर वो रंग पिंक कलर का होगा, पर्पल होगा, लाइलैक होगा या बटर येलो होगा तो मुझे ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज ये कलर्स ना आजकल मुझे सूट काफी कर रहे हैं. वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड लाइफ मस्त है पर आज एक सीरियस मुद्दे पे चर्चा हम करने वाले हैं. सो रिसेंटली जो है अभी समय रैना का जो शो वापस आया है इंडियाज गॉट लेटेंट, वो सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं एंड काफ़ी वायरल भी हो जाती हैं उसकी क्लिप्स. लेकिन एक क्लिप है पर्टिकुलरली जो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की है बिहार से, वो कह रही है कि मैं जो है बिल्कुल भी आदमियों को पसंद ही नहीं करती हूँ, मुझे मेल पसंद ही नहीं है, आई हेट मैन. एंड काफ़ी सारे जो हैं लोगों से उन्हें बैकलैश भी झेलना पड़ रहा है. काफ़ी सारे लोग उन्हें कह रहे हैं कि ओ माई गॉड, मेन्स आर नॉट बैड, मेन्स आर नॉट बैड, बिकॉज उनकी इंग्लिश का भी काफ़ी मजाक उड़ा था. सो काफ़ी सारे अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं लोगों के. एंड उसी के बीच समय रैना ने जो है ये सब बैकलश देखने के बाद एक स्टोरी डाली है कि यार ये सिर्फ एक कॉन्टेंट है, अगर वो नहीं आती तो शायद एपिसोड उतना फन नहीं बनता. सो मैं बस जो है ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो ये क्रिएटर है उसने ये भी कहा कि यार ये सिर्फ एक कॉन्टेंट था, ये सिर्फ एक कंटेंट है, लेकिन इनका इंस्टाग्राम जो है वो भी ये कहता है कि ये जो सारा कंटेंट है वो मेल कम्युनिटी के अगेंस्ट ही बनाती हैं एंड इनका जो पूरा एल्गोरिथम है वो उसी तरीके से वर्क करता है. सो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मैन हेटर का ये जो नया एक ट्रेंड सा बन गया है कि यार आई एम अ मैन हेटर, लोग होते नहीं है, जस्ट प्रिटेंड करते हैं टू बी डिफरेंट कि यार हम तो थोड़ा डिफरेंट लगेंगे, हम ये करते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो काफ़ी लोगों को डिमीन कर देते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं तो जो लोगों को हर्ट करती हैं. सो क्या आजकल किसी और को नीचे गिराना या किसी और जेंडर को या किसी और इंसान को नीचे पुल कर लेना और काफ़ी बुरी बातें बोलना, क्या ये ट्रेंड बन चुका है? क्या हमने इसको बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है? हमने लोगों को काफ़ी एक छूट दे दी है कि यार हाँ आप ऐसा कर सकते हो एंड इससे जो है काफ़ी फन आएगा, ओ माई गॉड यू आर सो कूल. सो क्या ऐसी बातें करना सोशल मीडिया पे कूल है या इरिटेटिंग है? आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जो लोग प्रिटेंशियस हो गए प्रिटेंड करके किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक इंसान को या एक जेंडर को बुरा बोलने लग जाते हैं, क्या ये सही है आपके हिसाब से? क्या ये कूल सच में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? अब देखो, ये लोग कूल लगे या ना लगे, हमारा जो अगला गाना है वो आपको ज़रूर कूल लगे, बिकॉज कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. तब तक आपको बस इतना सा करना है 3311063 पर मुझे बस ये कहना है कि यार ये वाली चीज कूल है या अनकूल है. बस इतना लिख दीजिए कि ये जो इन कंटेंट क्रिएटर, इन महिला कंटेंट क्रिएटर ने कहा है कि आई हेट मेन एंड मेन आर नॉट गुड, आप इससे कितना रابطہ रखते हैं कि यार ये जो है कूल बन गई या अनकूल रह गई, बस इतना बता दो मुझे. फिलहाल ये तो ढिशुम गाना जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय करते हुए कहते रहिए आपकी कशिश के साथ जी बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

जेन जीज, जेन एल्फा आउट देयर, इवन मिलेनियल्स आउट देयर, आपको अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करना है, पॉजिटिवली पोस्ट कीजिए. अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको बूस्ट मिल जाएगा, आपको लोग पसंद करेंगे, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है प्रिटेंशियस होने की. सो फिलहाल इसी एक अच्छी वाइब पे, एक अच्छा वाइब वाला गाना आई एम इन लव जो है आर आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

यार देखो, किसी ने तो मेरी लकीरों को भी देख के ये कहा था कि इस फ्राइडे को जो है तुम कोई मूवी नहीं देख पाओगी, तुम बिल्कुल बिंज नहीं कर पाओगी। लेकिन लेकिन लेकिन मुझे तो मजा आता है ना यार लोगों को गलत प्रूफ करने में, इसीलिए सबसे फेवरेट मूवी अपनी मैंने लगाई और इंजॉय करना शुरू कर दिया। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। सो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडियाज गॉट लेटेंट की, हमने बात किया मैन हेटर्स को अनकूल कहने के बारे में, एंड वो मैंने जो है फ्राइडे को देखा था। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करने के लिए आई हूँ, सो अगर आप एक अच्छी लाइट हार्टेड मूवी जो है वो देखना चाहते हो, सो आप मुन्ना भाई की जो दोनों मूवीज हैं, मुन्ना भाई मूवी जो है लगे रहो मुन्ना भाई एंड मुन्ना भाई MBBS, ये दोनों मूवीज जो है वो देख सकते हो। अगर आपने अभी रिसेंटली प्रीतम एंड पेड्रो देखी है ना, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, सो ये एक मूवी है जो आपको छोटे सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट और सर्किट से एक बार और प्यार करा देगी। सो फिलहाल जो है ये मेरा रिकमेंडेशन रख लो और ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर क्या कमाल है, इंजॉय करो।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: दिलजीत दुसांझ के इस गाने के उस पार हम बात करेंगे कि यार फैशन में आखिर क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ ट्रेंडी चल रहा है। सो स्टे ट्यून्ड रहो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो।

0: एसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

मूवी का नाम हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। ये एक ऐसी मूवी है जो सिर्फ लहंगे की भाषा में बात करती है, और सीरियसली ये मूवी जो है एक लहंगे के अराउंड जो है वो घूमती है कि किस तरीके से एक लड़की जो है वो अपनी शादी का लहंगा जो है डिजाइनर वाला लेने के लिए जो है शहर जाती है, एंड उसको एक लड़का पसंद आ जाता है, एंड वो अपने डैड को मेटाफोरिकली लहंगे की लैंग्वेज में समझा रही होती कि क्यों उसके लिए ये जो लड़का है ये ज्यादा बेहतर है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखो यार, जितनी भी फैशन गर्लीज है ना वो कुछ इसी भाषा में बात करती हैं, वो फैशन की भाषा ही बोलती हैं। आप उनकी कॉन्वर्जेशन सुनो, वो मतलब बात करते करते बीच में किसी ना किसी एक गारमेंट का नाम, किसी ना किसी फैशन यू नो डिजाइनर का नाम या किसी कलर का नाम जरूर बोल देती हैं, और ये ज़रूरी है। तो अगर किसी फैशन गर्ली की पहचान आपको करनी है उनसे 5 मिनट बात कीजिए। अगर उस 5 मिनट की बात में उन्होंने 6 बार किसी ऐसी चीज़ की बात की है, फैशन की बात की है, तो बस वो सर्टिफाइड फैशन गर्ली है लाइक मी। सो देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक फैशन गर्ली हैं या बनने के प्रोसेस में हैं या बस चाहते हैं कि यार हम ट्रेंड्स के साथ जो है थोड़ा मैच कर पाएं, तो मैं आपको बताने के लिए आ गई हूं कि ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो इस 2026 के समर में आपको आपके वार्डरोब में ऐड करनी ही चाहिए, जो कि टाइमलेस है। मतलब अगर आपने एक बार ही पीस परचेज कर लिया या अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आप जो है इसको ओवर द इयर्स यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा, मतलब फैशन आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। सो मैं बात कर रही हूँ वाइट विंटेज कॉटेज ड्रेस की। अब वो वाली ड्रेसेस जो आपने यू नो मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे या ऐसे बहुत सारे 90s के गानों में जो हम एक्ट्रेसेस को पहने हुए देखा, जिसमें एक प्यारी सी डेलिकेट सी लेस डिटेलिंग होती है, फ्लोई सी कॉटन की एक प्यारी सी ड्रेस होती है, लेंथ जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है, उसको किस तरीके से स्टाइल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वाइट विंटेज कॉटेज कॉटन ड्रेसेस जो है इस वक्त काफ़ी इन ट्रेंड है, सो एक आपके वार्डरोब में होनी ही चाहिए। अब देखिए, मेरे पास वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी मुझे वाइट कपड़े नहीं लेने देती है। उनके हिसाब से मैं वाइट कपड़े लेने के लायक ही नहीं हूँ, पहनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं स्कूल की वाइट शर्ट भी जो है सिर्फ लंच तक वाइट रख पाती थी, उसके बाद वो जो है किसी न किसी जगह से येल्लो ज़रूर हो जाती थी, मैं उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर गिरा लेती थी। फिलहाल कॉकटेल 2 मूवी से ये ट्रैक एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Time check. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: सो जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:12, दैट इज 12:12. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
5: हाय गाइस, इज अबार्ट शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव.

0: ओए होए, मतलब मुझे जो है ये गाना सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि यार मैं खोवो गई हूँ क्या कहीं, या शो करना बाकी है अभी। वेलकम बैक 106.3 रेडियो आरएफ पर, मैं हूँ आपकी कसोजन, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड लाइफ अपडेट आपको देने का मौका आ गया है। सो मैंने जो है इंस्टाग्राम का प्रीमियम फाइनली ले लिया है, मतलब मैं जो है बस अपनी अपनी फीड पे अपनी खुद के पेज पर जो है अपनी पोस्ट को रीअरेंज कर रही थी, एंड तभी एक ऑप्शन पॉप करता है कि अगर आपको 3 से ज़्यादा अपनी फोटोज़ को पिन करना है सो आप प्रीमियम ले लो, एंड मी बी मी मैंने ले लिया। एंड उसके बाद वो जो है इंस्टाग्राम मुझे काफ़ी सारे फीचर्स बता रहा है कि ओ अब आप जो है स्टोरी जो है किसी की भी बिना उन्हें पते लगे देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो कि सामने वाले ने आपकी स्टोरी देखी है या नहीं देखी है, कितनी देर पहले देखी है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, सब आपको पता चल जाएगा। बस यही फीचर है, मतलब मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कोई बचा भी नहीं था कि जिसको मैं सर्च करूं, जिसके लिए मैं स्टोरी डालूं और वो मैं ये देखूं कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या कोई मुझे स्टॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि ये मेरी लाइफ का अकेलापन है या फिर मतलब इसी को अडल्टिंग कहते हैं। खैर एक और बात जो है जो इस प्रीमियम में मुझे अच्छी लगी वो ये है कि मुझे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो फॉन्ट्स हैं उनका एक्सेस मिल गया। सो जनरली इंस्टाग्राम पे जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो सो आपको जो है फॉन्ट्स उतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, अगर आपको कुछ फैंसी लिखना है या कुछ एक अलग फॉन्ट में लिखना है तो उसके लिए हमेशा आउटसोर्स करना पड़ता है, उसकी सर्च कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन प्रीमियम लेने के बाद आपको एक एड ऑन मिल जाता है कि एक वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स आपको जो है टेक्स्ट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप वो इंसान हो जिसने थोड़ी समझदारी दिखाई है एंड उसने प्रीमियम नहीं लिया है सो मैं आपको कुछ विम्सिकल फॉन्ट्स के लिए कुछ वेबसाइट्स बता सकती हूँ जहां पर जाकर आप अमेजिंग वाले फॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो अपने कंटेंट को बनाने के लिए। सो अगर आपको जो है फैंसी कर्ली या कार्टूनिश वाला जो है कोई फॉन्ट चाहिए सो आप डा फॉन्ट जो है वो यूज कर सकते हो, DAFONT। एंड अगर जो है आपको विम्सिकल यानी थोड़ा फेरी टेल प्रिंसेस वाइब्स वाले अगर फॉन्ट्स ज़्यादा पसंद है तो 1001 फॉन्ट्स नाम का जो है एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे एंड आपको एक अमेजिंग तरीके से आपका फॉन्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। इनोवेट एलिमेंट्स जो है ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ENVATO एनवेटो एलिमेंट्स, ये जो है आप टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। माई फॉन्ट्स नाम की भी एक वेबसाइट है जहाँ पर जितने जेनरिक डे टू डे वाले यूसेज वाले फॉन्ट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो ये सारी वेबसाइट्स आप ट्राई करो, अगर आपको किसी का नाम जो है आपसे मिस हो गया है सो 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली सारे इन वेबसाइट्स का जो है नाम भेज दूंगी। फिलहाल इस कूल इन्फॉर्मेशन के बाद कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर तो बनता है, बस इसीलिए ये गाना जो है इंजॉय करके आइए, बाकी एक बहुत अमेजिंग वाली बातचीत जो है इसके बाद हम करने वाले हैं। स्टे ट्यून और कहते रहो कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल
0: सॉन्ग, ये तो बताया ही नहीं कि क्या कहना है। आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

अगर इस गाने की वीडियो आपने थोड़ा भी ध्यान से देखी ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि अक्षय खन्ना शुरू से अपनी मूवीज में वही सेम स्टेप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बस हमें पसंद अभी धुरंधर के बाद आया है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, आज जो है एक बहुत ही स्पेशल दिन है। सो आज है वर्ल्ड कैरियोके डे। कैरियोके मतलब जब हम लिरिक्स को देख देख कर उसके साथ गाना गाते हैं। एंड देखिए यार, मुझे ऐसा लगता है कैरियोके जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक बेसिक नीड है, बिकॉज इतने कॉन्फिडेंस से गलत लिरिक्स जो है हम लोग गाते हैं ना, कि क्या बताऊँ। मतलब अभी रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे गाने डिस्कवर किए जिनको मैं बचपन से गलत गाते हुए आ रही हूँ, एंड अब एक बार किसी ने मुझे उसके सही लिरिक्स बता दिए तब मुझे वो हर वक्त जो है सही सुनाई दे रहे हैं। अब मैं जो बचपन से सुन रही थी वो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कई बार जो है कैरियोके ज़रूरी होता है। सो आप मुझे ऐसे बताइए कि ऐसे कौन से गाने हैं जो हम बिना कैरियोके के जो है अब तक गलत गा रहे थे। कोई ना कोई तो ऐसा गाना होगा जिसके लिरिक्स हमें नहीं आते होंगे। तो 3311063 ये जो है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर बस आप मुझे बताओ कि यार कशिश देखो ये वाला गाना है, इसे अक्सर जो है लोग गलत गाते हैं, इसके लिरिक्स को गलत गाते हैं। अगर ऑडियो नोट भेज दोगे तो और मजा आ जाएगा। फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। ये गाना जो है आसान है, इसको जो है आप गलत नहीं गा सकते। सो क्वीन मूवी से इस ट्रैक को एंजॉय करो अरिजीत सिंह की आवाज में, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: जैसे अनूप जैन जी ने कहा कि शायद मेरे जाने से आपकी महफिल थोड़ी उदास सी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे यहाँ से जाने के बाद भी आपको बैक टू बैक गाने जो है वो सुनने को मिलते रहेंगे, तो यार दुख की कोई बात नहीं है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई मैं। आज जो वर्ल्ड कैरियोके डे है, सो हम इस पर बात कर रहे थे कि यार ऐसा कौन सा गाना है जिसे अक्सर लोग गलत गाया करते हैं। तो अस्मा जी ने एक बहुत ही बढ़िया जो है गाना हमें याद दिलाया कि बन्नो तेरा स्वैगर जो है उसे अक्सर लोग बोला करते थे बन्नो तेरा स्वेटर। सो ये एक गाना है जिसे कैरियोके ने ठीक किया है, लिरिक्स हमें बताए हैं। सो बस ऐसे ही गाने जो है कौन कौन से हैं वो आप हमें इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव के पेज पे या व्हाट्सएप पे 3311063 पर भेज सकते हैं। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय कहने का। सो मैं यहाँ से चलती हूँ, कहूँगी बस वही आपसे जो हर रोज़ कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए यानी हाइड्रेशन का जो है वो ध्यान रखिए, सनस्क्रीन लगाए बिना बिल्कुल बाहर मत जाना, और बाकी मुझे याद रखना है। और अगर मेरी याद सताए तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊँगी। तो फिलहाल टाटा बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपकी कशिश के साथ कह दे रहिए जियो बिंदास, बाय बाय।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to...

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Say what?

Wow. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग से नाइट।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 to 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है ऑलिव रिचार्ज और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई एक नई टाइमिंग के साथ हम यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ वक्त अब इसी वक्त में हम आएंगे और आपके साथ वक्त बिताएंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से, कहानियां, खबरें शेयर करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम एक ड्राइव पर जाने वाले हैं। देखिए मैं जानता हूँ दोपहर का वक्त है, थोड़ा थोड़ा आलस तो आ ही रहा होगा, मगर कोई गल नहीं जी, हम आ चुके हैं भाई, आया है चिल करा कर ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑलिव रिचार्ज, बहुत सारी बातें करेंगे, स्टे ट्यून्ड। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: is brought to you by.
1: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि समर का टाइम है, गर्मी के इस मौसम में काफी ठंडा ठंडा कूल कूल कुछ खाने को या पीने को मिल जाए तो बहुत मजा आ जाता है। वैसे ही एक स्नैक के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। स्नैक का नाम है वाटरमेलन पिज्जा। आप सोचोगे कि वाटरमेलन पिज्जा, सुदेव आर यू आउट ऑफ योर माइंड करके, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो वाटरमेलन पिज्जा ऐसा नहीं कि आप मैदे के ऊपर वाटरमेलन डालते हो फिर आप बेक करने के लिए रखते हो, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ नेम। मगर क्या है वाटरमेलन पिज्जा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप भाई अच्छे से जो वाटरमेलन है आपके पास उसे बड़े बड़े वेजेस में काटिए। उसके बाद आप योगर्ट को ऐसे स्प्रेड कीजिए अच्छे से एंड उसके ऊपर इन वाटरमेलन वेजेस को स्प्रेड कीजिए। उसके साथ उसको टॉप करने के लिए उसमें कुछ फ्रेश बेरीज या फिर कोकोनट फ्लेक्स आप डाल सकते हैं या फिर थोड़े चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। ये काफ़ी रिफ्रेशिंग हाइड्रेटिंग एक स्नैक है जिसको प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे और कुछ बेकिंग की ज़रूरत भी नहीं है। या फिर इसको थोड़ा हम ट्वीक कर सकते हैं, वाटरमेलन पिज्ज़ा नहीं, हम इसे एक बोल की तरह यूज़ कर सकते हैं, समर फ्रेश बोल करके। एंड इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए ये सब आपको यूज़ करना है बस एक बोल में डाल के। तो ये काफ़ी अच्छा स्नैक रहता है और काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच भी रहता है क्योंकि वाटरमेलन इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन। साथ ही साथ वाटरमेलन सीड्स जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं। उसके साथ साथ योगर्ट आप खाओगे तो प्रोटीन भी मिलेगा और बेरीज खाओगे तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो भी मिलेंगे। तो हेल्थी भी, फन भी, कूल भी। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ भी एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो है हम अपने पेज में डाल रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सिक्यूटिव लेंस करके एक पॉडकास्ट जो है चल रहा है, जिसका थोड़ा सा वर्जन जो है आप सुनते हो ऑन एयर में सैटरडे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। मगर फुल फ्लैश्ड वीडियो के लिए आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ voicecast.me जो है हमारा पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है हमने वहाँ पे कंटेंट डाला है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इंतजार किस बात का है, कंटेंट को एंजॉय करने के तरीके बहुत सारे हैं हमारे साथ, बस आपको चूज करना है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार मेरे स्कूल में ना बहुत सारे डिफरेंट कोर्ट्स ऐसे क्लासरूम्स और लैब के ऊपर ऐसे लगाए जाते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता था वो सारे कोर्ट्स पढ़ने में, काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता था। और स्पेशली जहाँ पे हमारे लैब होते थे, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, जो वो पूरा एक कॉरिडोर था, उसके ऊपर जो कोर्ट्स लगे रहते थे वो बहुत बढ़िया थे। और उनमें से एक कोर्ट जो मैंने पढ़ा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो कोर्ट ऐसा था कि व्हेन यू विन से नथिंग, व्हेन यू लूज से लेस करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है लाइफ में, क्योंकि जब हम कहीं जीत जाते हैं या फिर कुछ अच्छा कर लेते हैं तो एक्साइटमेंट में आके ना कुछ ऐसे कर देते हैं, फिर बोल देते हैं जो सही नहीं बैठता कभी कभी। और जब हम हार जाते हैं तो हम ग्रीफ में रह के या फिर उस शॉक में रह के कुछ ना कुछ बोल जाते हैं जो भी सही नहीं रहता। तो बैलेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब इस कोट को मैंने थोड़ा एनालाइज किया और जैसे जैसे डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू गो थ्रू किया, तब मुझे पता चला कि इस कोट की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो हर एस्पेक्ट में जो है उतरती है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ना चाहेंगे, एक गाना प्ले करेंगे और कहेंगे जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
0: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
4: Olive Recharge.
5: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by.
7: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
0: Only recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बात जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। चलिए फिटनेस के बारे में एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग थोड़ा सा ऐसे कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। स्ट्रांग लेग मसल्स एज बढ़ने के साथ इंडिपेंडेंस मेंटेन रखने में या फिर करने में अपने आप को हेल्प करते हैं। ऐसा कैसे होता है? रिसर्च के हिसाब से ये हमें देखने को मिलता है कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ हेल्थी एजिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। स्ट्रांग लेग मसल सिर्फ वॉकिंग के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के काम आसानी से करने के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। स्ट्रांग लेग्स की वजह से वॉकिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग ईजियर हो जाती है, बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, चेयर से उठना या बैठना आसान होता है, फॉल या फिर फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। एज के साथ मसल्स का जो मास होता है वो नेचुरली थोड़ा कम होने लग जाता है और ये जो है एज रिलेटेड मसल लॉस बोलते हैं इसे। इसलिए रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिजिकल एक्टिविटी लोअर बॉडी मसल्स को स्ट्रांग बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि जिन लोगों की लेग स्ट्रेंथ अच्छी होती है उनमें मोबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस ज्यादा देर तक मेंटेन रहने की संभावनाएं होती हैं, और इसके साथ साथ वो अपने डेली एक्टिविटीज जैसे शॉपिंग, घर के काम या इंडिपेंडेंटली चलना ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, लंजेस, स्टेप अप्स, ब्रिस्क वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सब टाइम के साथ हमारे लेग्स को अच्छा सा स्ट्रेंथ देती हैं और उसको मेंटेन करने में भी बहुत मदद कर सकती है। तो अपने पाँव का ख्याल रखिए, और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Joya Lucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

से नेहा हमार होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
2: क्या बताऊं इन सवालों में कब से यूं फंसा हूं.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार यहाँ पे एक एड के बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एड फिल्म्स आते हैं जो बहुत हमें टच कर जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारे जहन में एक मार्क अच्छा सा छोड़ देते हैं। वैसा ही एक एड मैं बताना चाहूंगा जो मैंने देखा था, बहुत टाइम पहले देखा था। गूगल का एड है, रीयूनियन है उसका नाम। और उसमें बेसिकली होता यह है कि पार्टीशन के बाद दोस्त जो होते हैं, दो लोग, वो अलग अलग हो जाते हैं। एक इंसान पाकिस्तान में होता है, एक इंसान दिल्ली में आ जाता है। और जो दिल्ली में आ जाते हैं वो एक बहुत ही फेमस एक स्वीट शॉप का चेन शुरू कर देते हैं। उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस कोशिश करते हैं इन दोनों दोस्तों को फिर से जो है मिलाने में, एक मुलाकात करवाने में। बहुत ही प्यारा सा ऐड है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, रीयूनियन है इसका नाम। आप जाइए चेकआउट कीजिए, इसे देख के सही में मजा आ जाएगा। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। क्या घड़ियां स्पेस में जा सकती है? क्या घड़ियां चांद में जा सकती है? अगर मैं बोलूं हां तो चकित मत होना, एक घड़ी है जो चांद में गई थी। आज उसके बारे में हम जरा बात करना चाहेंगे। तो पहले जरा मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है। क्योंकि चांद में या फिर स्पेस में जाना एक घड़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि स्पेस के कंडीशंस जो होते हैं अर्थ जैसे नहीं होते। तो उन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनका मेकिंग जो है बिल्कुल टॉप क्लास होना चाहिए। और वैसे ही एक घड़ी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, मगर इसके टेस्टिंग के बारे में बता देता हूं। 48 आवर्स तक 71 डिग्री सेल्सियस में इसको रखना, उसके बाद 30 मिनट्स तक 93 डिग्री सेल्सियस में रखना, फिर 4 घंटे के लिए -18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखना, और इन 71 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक हीट करने के बाद एकदम से एक डीप्रेशराइज नियर वैक्यूम में जो है उस वॉच को रखना, 240 आवर्स तक 95% ह्यूमिडिटी में रखना, 48 आवर्स तक 100% ऑक्सीजन एट 0.35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखना। ये सारे जो हैं टेस्ट थे कुछ जो नासा ने करवाए थे। और भी टेस्ट है, जैसे कि शॉक टेस्ट है, 640G शॉक्स जो है डिफरेंट एंगल से देना, एक्सेलरेशन फ्रॉम 1G टू 7.25G विद इन 333 सेकेंड्स करवाना, डीकम्प्रेशन यानी कि 90 मिनट्स तक एक हाई वैक्यूम में 71 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद एकदम से 30 मिनट्स एक 93 डिग्री सेल्सियस में रखना, एक घंटे तक 1.6 ATM के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखना। ये सब जो है एक घड़ी को भाई बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, मगर एक घड़ी सरवाइव कर गई जिसको दो लोगों ने पहना था जब पहली बार इंसान चांद में गया था। वो घड़ी कौन सी है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे आप गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है यहाँ हर चोट एक मेडल है हारना मना है और डरना गुनाह है यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
2: इन एसोसिएशन विद
1: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
1: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर
4: दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
5: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज
6: This hour is brought to you by.
7: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

0: वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे नासा ने इतने ग्रुवेलिंग टेस्ट रखे थे उन वॉचेस को टेस्ट करने के लिए जो स्पेस में जा सकते हैं या नहीं। उनमें से सिर्फ एक वॉच विक्टर बन के निकला। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो नासा ने इन टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लग्जरी ब्रांड्स के क्रोनोग्राफ मॉडल्स के वॉचेस लिए थे। रोलेक्स के आए थे, लॉन्जाइंस के आए थे उनमें, और साथ साथ ओमेगा भी था। बट इन डिफरेंट ब्रांड्स में से सिर्फ ओमेगा जो है वो सक्सेसफुल निकला। ओमेगा का जो स्पीड मास्टर था उसने कभी भी रुकना बंद नहीं किया, बल्कि रोलेक्स के मॉडल्स जो थे वो तो दो बार बंद हो गए थे ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर टेस्टिंग में। और लॉन्जाइंस के वॉचेस जो क्रिस्टल वॉब्ड हैं वो भी प्रेशर टेस्ट को नहीं झेल पाए, मगर ओमेगा स्पीड मास्टर सारे टेस्ट को झेल गया और बस माइनर टाइमिंग वेरियंसेस आए थे और थोड़ा सा डायल ल्यूमिनोसिटी जो है उसका थोड़ा गया, बाकी पूरा वॉच था जो था वो फुली फंक्शनल था। इसलिए उसे एस्ट्रोनॉट्स का अप्रूवल दिया गया एंड March 1, 1965 में नासा ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ओमेगा स्पीड मास्टर जो है फ्लाइट क्वालिफाइड है फॉर ऑल मैन्ड स्पेस मिशंस। और सोच के देखिए 1969 में जब पहला आदमी गया था चांद में वो ये पहन के गया था। अब इसमें भी छोटी सी एक क्या कहते हैं वो ट्विस्ट आ जाती है। बात यह है कि जो फेमस मून वॉच है ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल, इसे तो नील आर्मस्ट्रांग ने भी पहना था, बज़ एल्ड्रिन ने भी पहना था, मगर नील आर्मस्ट्रांग जब उतर रहे थे तो ये वॉच वो अंदर रखे चले गए। सो टेक्निकली बज़ एल्ड्रिन पहले इंसान बने जिसने चांद पे घड़ी पहनी और उस घड़ी का नाम था ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक रेडियो ओलिव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है तो जानी क्या किया। सीधा जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, चेकआउट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को, कंटेंट को चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, कंटेंट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सेव कीजिए, उसके साथ साथ स्टोरी पे भी डालिए। और एक और चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा वो ये है कि रेडियो ओलिव का एक ऐप भी है। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लेके बुर्ज अल दोहा तक कहीं पर भी अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, वो कहीं पर भी बैठ के हमें सुन सकता है, इस जर्नी में हमारे साथ आ सकता है। तो इनको भी इसके बारे में बताना। और ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इधर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जा सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
3: Terms and conditions apply.
2: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
4: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हेवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर में सिमरन पहुंच जाएगी और मेरा वक्त खत्म होने वाला है। तो खुली बाहों से जो है सिमरन का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना प्यार सिमरन को दीजिएगा। और जाते जाते जाते हम यही याद दिलाना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास। Radio

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदा।

0: जल्दी है, लेकिन मैनू कोई जल्दी नहीं है क्योंकि वे भी चार घंटे अपने ही है। मैं कहती सुने होगी दादा की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आ चुकी है, जबरदस्त इवनिंग वे भी शुरू हो चुका है। 5:06 और 4 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे
1: टाइम चेक। Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: रहने दे यार, फिर तू ही गाएगा।
1: मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है, ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है।
0: अपन आज के डिंग डांग करना है क्योंकि चार घंटे अपने होने वाले हैं और शो अपना जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। क्या आपका पूरा दिन जबरदस्त रहा? नहीं रहा तो कोई चक्कर नहीं, हर दिन परफेक्ट थोड़ी होता है यार। आज का दिन तो सोशल मीडिया के लिए भी परफेक्ट नहीं था। आज इंस्टाग्राम भी डाउन था, इन बिटवीन स्टोरीज नहीं अपलोड हो रही थी, अभी भी कुछ लोगों की स्टोरीज अपलोड नहीं हो रही है, फेसबुक भी डाउन था। सो इट हैपेंस यार। अपन ना, मैं सोच रही हूँ कि अपन कैसे हो जाते हैं ना, कितनी आदत हो गई है कि सारी चीज परफेक्ट चलनी चाहिए, लाइफ भी परफेक्ट चलनी चाहिए। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इंस्टाग्राम भी डाउन होता है, जिंदगी भी डाउन होती है। सो दैट्स ओके। अगर आपका आज ऐसा अच्छा वाला दिन नहीं गया तो अब मैं आ चुकी हूँ, टेंशन मत लीजिए। कैसा आपका दिन? गुड इवनिंग वाले मैसेजेस कुछ शेयर करना चाहते हो, सब कुछ आपको पता है ना, मुझे व्हाट्सएप करना 3311063 पर। जियो बिंदास, खुश रहो यार, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हो आप।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.
4: It's not just a game, it's an emotion.
5: It's an emotion.
4: It's an emotion.
3: FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
6: इन एसोसिएशन विद.
7: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
8: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
7: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
9: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
10: गुलराज सिंह
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
10: जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
11: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
12: आरजे सिमरन के साथ.
13: Zabardast evening, make you drive golden with.
14: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
15: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दिस ट्रैक यार. कुछ कुछ होता है. कल हम दोस्त लोग बात कर रहे थे कि देखो यार कुछ कुछ होता DDLJ, ये उस टाइम पे हम लोगों ने देख ली. लेकिन अगर आज हम इनको देखने बैठते हैं, ठीक है ये फिल्म्स हमारे दिल के करीब तो हैं, लेकिन हम बहुत सारी गलतियां निकाल लेंगे. अरे यार ऐसे कैसे यार. सोया 5:18, 19 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे. ये लड़का है दीवाना और ये लड़की है दीवानी. कितना जी दीवाना बन तो आज होने वाला है और आज होने वाला है हल्ला. तो एक काम कर, पलट मेरी जान,
1: पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना.
0: मैं तो कहती हूँ आज बस तू मेरी जान चुप कर जा. बिल्कुल तू चुप. आपको क्यों करना है, क्योंकि आज मैच होने वाला है स्पेन एंड अर्जेंटीना के बीच में. यार मुझे लग रहा था कि सब लोग अर्जेंटीना के बारे में बात करेंगे, लेकिन ना ज्यादातर लोग स्पेन के बारे में बात कर रहे हैं. सो आज फाइनल फीफा वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है स्पेन एंड अर्जेंटीना के बीच में. और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का मन जो है वो क्या कह रहा है, कौन लगता है कि कौन जीतेगा. देखो यार अपने को तो वाइब चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया. मेरे उतने ज्यादा पल्ले नहीं पड़ता है, बट मुझे मजा आता है यू नो फुटबॉल मैच देखने का. एंड कोई भी टीम जीते यार, जिसका लक रहेगा वो आज जीत जाएगी. बट आपको क्या लगता है, अगर आप उस, कई लोग गेम में बड़े घुसे होते हैं, वो ये तक बता देते हैं 2-3 होगा, 1-2 होगा, ऐसे से करके. आज आपको क्या लग रहा है, अगर आप में वाकई ही वो बात है कि आप मतलब आपके लिए फुटबॉल सब कुछ है. 3311063 पर आप मुझे बताइए व्हाट्सएप करके.
2: ये खेल है, खेल है ब्लॉकबस्टर.
3: In association with...
4: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
5: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
4: Your trusted remittance partner.
6: Ab suniye, Olive ka zabardast hai. Zabardast hai.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange.

0: in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joya Lucas. Joya Lucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ਹਾਲ-ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5:31:40 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਵੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ ਯਹੀ ਤੋਂ ਆਓਗੇ रिग्रेट भी हो गया यार. देखो लाइफ में ना बहुत सारी चीजों का रिग्रेट जो है वो आपको होता है, लेकिन मुझे लगता है एक चीज का रिग्रेट लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता होगा, जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है, हानिया. हानिया मुझे बहुत प्यारी लगती है यार, बंदी बड़ी क्यूट है, लेकिन आजकल हानिया के बारे में ये बात हो रही है कि भाई जो उसके डिम्पल है स्पेशली बहुत क्यूट लगती है यार उसके डिम्पल. कहती है कि वो डिम्पल जो है, इनकी पुरानी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है कि पहले उनके डिम्पल जो थे वो नहीं थे, उन्होंने सर्जरी से डिम्पल जो है वो लगवाए. पहले तो मुझे ये था भाई डिम्पल भी कोई लगवा सकता है क्या, बट यार यू नो आपकी बॉडी है, आपका जो करने का मन करता है कि आपको कुछ सर्जरी या जो भी आपको फेशियल करवानी है, आपको ये करवाना है, बालों का ये करवाना, मुझे लगता है कि हर बंदे का अपना एक हक होता है. बट यस, ये जो डिम्पल अगर उन्होंने सर्जरी भी करवाई है तो काफ़ी क्यूट लगते हैं यार. मतलब उसमें कुछ ऐसा, जब कोई इंसान अपने फेस में कुछ ऐसा करवा लेता है वो अच्छा भी नहीं लगता, उसने मेहनत भी करवा लेती होती तब लोग थोड़ा सा ये बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि फिर भी किसी को किसी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है. बट यस, अगर मैं बात करूँ हानिया के डिम्पल बड़े क्यूट लगते हैं, अगर उन्होंने सर्जरी से करवाए कोई इशू नहीं है. मैं अगर आपसे पूछूँ कि अगर आपको डिम्पल अच्छे लगते हैं तो क्या आप सर्जरी से डिम्पल करवाना चाहेंगे इस तरह से, या फिर नहीं यार जैसे हैं वैसे ओके. 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं. उसके साथ साथ आजकल कुछ ऐसे कुछ वैसे क्लिप्स और पता नहीं क्या चीज़ तो आती है, कोई इंस्ट्रूमेंट आता है कि आप अपने से गालों पे वो लगा के रखते हैं, उससे आपके फेक डिम्पल बन जाते हैं. भाई साहब अलग लेवल का सीन चला है. डिम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड में मुझे प्रीति ज़िंटा के डिम्पल बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं यार वो.

एक नंबर गाने जी। जब क्या होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी जो है ना वो कोई भी चीज खरीदे या फिर उनके हाथों में दिख जाए वो या फिर किसी भी तरह के कपड़े पहन ले, वो लोग जो है ना वो खरीदना चाहते हैं जो उनको पसंद करते हैं। तो रिसेंटली जब नॉर्वे वापस आए हॉलैंड तो उनके हाथ में एयरपोर्ट से जो उनकी फ्लाइट से उतरते हुए एक रकुन था जो उन्होंने कैरी किया था, जो कि उन्होंने खरीदा था वापस लाते सुवेनियर लेके आए थे एक तरीके से। वो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जितने भी उनके फैंस थे उन्होंने वो देखा और $750 का था वो कुछ, और वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया। किस तरह से हम सब के ऊपर जो है वो इस चीज का असर पड़ता है कि भाई कोई भी चीज अगर हमारे किसी फेवरेट स्टार या सेलिब्रिटी ने कैरी कर ली वो अपने को तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो वायरल हो जाती है यार।

लोग इतने क्यूट हो यार, थैंक यू सो मच साजिद जी ने इतना प्यारा मैसेज लिख के भेजा, कहते कि मैंने 4-5 दिन आपको बहुत मिस किया और नॉर्मली मैं आप मैसेज करता नहीं हूँ बट मैंने आपको ये किया, एंड कहते कि हंसते वसते रहो, तुम भी हंसते वसते रहो यार, खुश रहो और ऐसे ही मैसेज कर दे रहा करो। सिमरन कौर आपके साथ बेबी जियो इन दास 2-1 एंड गो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: Commercial Bank presents CB 2026 million reals dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

भास्कर गुड़िये आगे सबको अपने अपने जानू याद है 6:50 स्टूडियो की घड़ी पे सच्ची दस

0: खूबसूरत गाने हैं, इतना अच्छा माहौल और मौसम कल मतलब आज बाहर होता तो ज्यादा बढ़िया होता, मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो अपने अलग लेवल पे पहुंची हुई है। कोई बात नहीं, मौसम के बारे में बात करते हो मेरी जान जाती है, थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे ओ ये क्या हो रहा है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ ये बात है।
0: भाई साहब, सबकी शादियां हो रही हैं, सबकी शादियां हो रही हैं। अब देखो AI पावर्ड ह्यूमनॉइड जो रोबोट्स हैं उनकी शादियां भी हुई है। 9 जुलाई को मैं पढ़ रही थी एक न्यूज, रॉबर्ट एंड मटिल्डा इन दोनों के नाम है, ये दोनों रोबो हैं और इनकी शादियां हो चुकी है। सोचो भाई, इनकी हो गई और आपकी नहीं हो रही है, अच्छी बात है नहीं हो रही है। जितनी देर तक बचना है उतनी देर तक बचे रहो, लाइफ अकेले भी अच्छी है, अगर कोई अच्छा साथी मिल जाए तो उसके लिए भी अच्छी है, उसके साथ भी अच्छी है यार, खुश रहो हर सिचुएशन में। पर रोबो की शादी हो गई, क्या चल रहा है लाइफ में।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: This is Amaya Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6:19:45 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟਾਈਪ ਕਿਆ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇ ਆਏ ਹਾਏ ਜਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਤੀ ਹੂੰ लेकिन मौसम के बारे में बात करके मुझे रोना आता है। अगर आपको भी रोना आती है और आपको भी पसीना आती है और आपको भी ह्यूमिडिटी आती है आपके चश्मे के आगे, बहुत गलत बात है यार। चश्मे वालों की तो बैंड बच जाती है यार भाई, गाड़ी से निकलते ही चश्मे चिट्टे हो जाते हैं एकदम। सो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस है। इस पे मत जाइए, ह्यूमिडिटी पे जाइए, 53% ह्यूमिडिटी का लेवल है। विंड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 43 डिग्री सेल्सियस था एंड यस ऑफकोर्स ऐसा भी बोल रहे थे कि अगले 12-13 दिन जो है वो और भी ह्यूमिड होने वाला है। सो ऑलमोस्ट अभी 11 दिन रह गए हैं और ये खत्म हो जाएगा, जुलाई भी, फिर अगस्त आ जाएगा, फिर अपना बर्थडे मंथ स्टार्ट होने वाला है। कौन कौन है जिसका जुलाई में बर्थडे आता है, कौन कौन है जिसका अगले महीने अगस्त बेबी है, वो भी मुझे बताइएगा। गिफ्ट नहीं देने वाली, हैप्पी बर्थडे बोल दूंगी, ठीक है? अपन वो काम नहीं करेंगे गिफ्ट लेने देने वाला, फिर मैं आपके लिए गिफ्ट खरीदूँ आपको अच्छा ना लगे, ऐसा भी हो सकता है ना, इसीलिए ऐसा ही प्यार बना रहने देते हैं। सुंदर ये रेडियो ऑलिव गॉड के जरिए जियो बिंदास सिमरन कौर आपके साथ। किद्दा जी ठीक हो?
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: एचसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आप लोगों के लिए जो है वो बज रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में कि आप लोग खुश हो रहे हो और आप लोगों के लिए गाने बज रहे हैं और आपके लिए आम भी बिक रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है वो 20 जुलाई तक चलने वाला है, क्योंकि बीच में आपको पता है कि बंद

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व्ड विद प्राइड। नानाताल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुकवा के अलखोर।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: राधा देखा मेरे से ना गाना गाया जाता है ना गाए ना बताया जाता है, मैं सिर्फ बोल पाती हूँ यार। जेंजी डिकोडेड में आज एक ट्रैवल स्लैंग जो है जेंजी यूज करते हैं, इसका नाम है वाइकेशन। वाइकेशन जो है, जब आप मान लीजिए कि आप किसी भी ट्रिप पे इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको बस रिलैक्स करना होता है, आपके इमोशंस जो हैं वो बस थोड़े से जुड़े होते हैं, बस आपको रिलैक्स फील करना होता है, लेकिन आप ऐसी लोकेशन में नहीं जाते हैं जो कि मतलब एक स्पेसिफिक होती है कि भाई लोग बात करते हैं उसके बारे में। होता है ना कभी कभी इंडिया में, चल यार मनाली निकल जाते हैं, चल यार शिमला निकल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपका दिल कर रहा है और आपको रिलैक्स फील करना है, तो उसको बोलते हैं वाइकेशन। वाइकेशन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि आपके इमोशंस, आपका, आपको पता है कि आप वहाँ पे जाके रिलैक्स हो जाएंगे, चाहे आप वहाँ पे 10 बार जा चुके हैं, आप स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं जाते हो कि नहीं यार पहले वहाँ पे चले गए थे, अब दूसरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वाइकेशन इज आल्सो गुड, राइट? सिमरन कौर है आपके साथ, जी ओ विनास रेडियो ऑलिव पर।
1: Song of the hour.
2: ये गाना
0: क्या जा रहा है यार, ये गाना कौन कौन है मुंबई से? लव जी

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: Socho, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

0: बज गए 6:35 बेबी स्टूडियो के करीब हो गए।
1: दानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाके अलखोर।
0: हां जी।

0: काश के हम होश में अब आने न पाए।
1: इस गाने को सुनने के बाद वैसे भी होश में आने का मन नहीं करता, कभी हाँ कभी ना से। ये गाना आप सुनेंगे थोड़ी देर में, कुमार सानू की आवाज। ट्रिविया श्रिविया में आज मैं इस फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ बातें जो है वो बताऊंगी, जो कि आपको भी नहीं पता थी और मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में फिर मुझे पता लगता है। सो शाहरुख खान ने बोला कि ये जो उनकी फिल्म है कभी हाँ कभी ना, वो उनकी फेवरेट फिल्म है, मतलब जिसमें उन्होंने काम किया है उनको बहुत पसंद है। एंड जब ये फिल्म आई थी तो एडवांस बुकिंग विंडो एट गेटी सिनेमा, ये ट्रेंड जो था वो स्टार्ट हुआ था इस फिल्म से, जहां पर शाहरुख खान बैठे थे। ओके, सो वो टिकट जो है वो जो भी खरीद रहा था उसको वहां पर बैठ के वो ऑटोग्राफ दे रहे थे। एंड इस फिल्म में ना तीन एंडिंग जो थी ना वो शॉट की गई थी, जिसमें क्या था कि पता नहीं है अभी तीन जो उन्होंने डिफरेंट एंडिंग्स शूट की हैं, सो उसमें से कौन सी एंडिंग जो है वो यूज होने वाली, ऐसा मुझे नहीं पता था कि अलग अलग एंडिंग्स भी शूट होती हैं। सो या उनमें से कौन सी एंडिंग शूट हुई आप लोगों को पता ही है, हम लोगों को पता है भी फिल्म में क्या था, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी कुछ बातें मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। टिल देन धुरंधर से लुट ले गया, सिमरन चौधरी ने गाया इस गाने नू। इधर कौन है सिमरन कौर, लड़कियां अच्छी होती है सिमरन नाम की।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल स्लो कुक्ड मंडी परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी नो नॉइस नो ड्रामा जस्ट सी फूड डन राइट बीबीक्यू फिश क्रैब्स prawns crafted with patience served with pride Nanatal Pahar the ultimate Katri adventure Souq Waqif Al Khor
2: Hi this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station Radio Olive
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: कभी हाँ कभी ना। कुमार सानू की आवाज, शाहरुख खान थे इसमें। लेकिन इस फिल्म में कुछ बहुत ही ऐसी बातें हैं जो कि आपको नहीं पता है फिल्म के बारे में। एक्चुअली शाहरुख खान ने ये फिल्म जो थी वो कितने में की थी, उनका मतलब उन्होंने ये फिल्म को 25,000 में किया था, 5,000 उनका साइनिंग अमाउंट था। सो पहले इस फिल्म में आमिर खान और जूही चावला जो थे वो लीड रोल में काम करने वाले थे, और शाहरुख खान जो दीपक तिजोरी रोल करने वाला था सेकंड लीड वाला वो करने वाले थे। लेकिन somehow आमिर खान का इंटरेस्ट जो है वो लूज हो गया, तो शाहरुख खान जो थे वो मेन लीड में आ गए। जूही चावला ने भी बैकआउट कर दिया, उन्होंने बोला कि उनके कुछ और प्रॉमिस है लेकिन वो स्पेशल अपीयरेंस जो है इस फिल्म में कर देंगी। तो जो दीपक तिजोरी को वाला रोल जो शाहरुख खान करने वाले थे वो फिर दीपक तिजोरी के पास आ गया। एंड क्या हुआ था कि इस फिल्म का आपको ऑलरेडी बताया कि बजट जो था वो काफी ज्यादा कम था, तो इनकी जो पूरा क्रू था वो मुंबई जा रहे थे, यू नो फ्लाइट से जा रहे थे, तो वो इकोनॉमी क्लास से जा रहे थे। तो एक जो यू नो बॉलीवुड के देवन वर्मा जो थे वो उसी टाइम उसी सेम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे देवन वर्मा, और वो बिजनेस क्लास से फ्लाई कर रहे थे। जब उनको पता लगा कि शाहरुख खान इकोनॉमी में, तो उन्होंने शाहरुख खान को पूछा कि हाउ कम कि आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, तो शाहरुख खान ने बहुत ही पोलाइटली से बोला, कहते कि माय टिकट इज फॉर इकोनॉमी, लाइक बजट ही नहीं है ना इसीलिए। सो या हाउ स्वीट यार, फिल्म जब भी बनती है या फिर यू नो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको फिल्म के बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एकदम शाहरुख खान तो बन के किंग खान बन के पैदा नहीं होता ना, तो शाहरुख खान को भी किंग खान बनने में बहुत सारा टाइम लगा। सो या आई होप आपको अच्छा लगा हो। कभी ना होप नहीं लूज करनी चाहिए, सब हो जाता है। सुनते रहो रेडियो ऑलिव पर, कहते रहो जियो बिंदास। आ रही है थोड़ी देर में,
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: नंबर
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: सो रियलिटी चेक में आज का जो रियलिटी चेक है वो क्या आपने कभी किसी को कठोर दिल होते हुए देखा? एकदम वो कहते ना कि तेरा पत्थर दिल हो गया है। सो ये जो लोग पत्थर दिल हो जाते हैं ना, वो जब नरम दिल के थे ना तो उसकी वो इतना ज्यादा कीमत चुका चुके हैं वो लोग, फिर पत्थर दिल उनका मन नहीं करता होने का। क्योंकि जब आप नरम दिल के होते हो ना तो लोग उसका आप बहुत फायदा उठाते हैं, आपका बड़ा फायदा लेंगे। तो क्या होता है कि ये जो नरम दिल वाले हैं ना, इनका दिल भी टूटता है। जब टूटता है और ये फिर कठोर होते हैं, फिर सामने वाले को बुरा लगता है, क्योंकि सामने वाले सब तो उसको फॉर ग्रांटेड लेके बैठे होते हैं। सो कभी भी किसी के साथ इतना बुरा मत कीजिए कि वो जो नरम दिल का इंसान है वो कठोर हो जाए और फिर लोग उसके बारे में बातें करें। क्योंकि एक बार जो एक नरम दिल वाला इंसान कठोर हो जाए ना, फिर उसको दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले उसको हर चीज से फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका दिल अच्छा है ना यार। दिल अच्छा फिर भी रहेगा, लेकिन उसको फर्क जो है वो पड़ना बंद हो जाएगा। तो कभी भी किसी इंसान को इस लेवल पे मत लेके आइएगा कि उसको कुछ फील होना या उसको मतलब कुछ भी जो है वो बंद हो जाए सब कुछ, तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। ये मत करिए किसी के साथ कभी भी, इतना गलत मत करिए। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ मैं। वापस लौट के नेम गेम खेल रही हूँ, तैयार हो जाओ।

0: जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

अरे अरे अरे, आपके इमोशंस ऊपर नीचे होने वाले हैं इस गाने के साथ। आशिकी फिल्म से गाना सुनने वाले हो, ऑल टाइम फेवरेट है यार इसके गाने। कुमार सानू अनुराधा जी की आवाज। 3, 2, 1 एंड गो।

यार मैं ह्यूमिडिटी देख रही हूँ, लाइक 62% जो है वो बाहर ह्यूमिडिटी पहुंच गई, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है यार। मैं क्या चीज सुनियो कहता था कि हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौन है थोड़े नाल, आप बिना देर लगाते हुए आप लोगों के नाम लेती हो दोस्त। से आप लोगों के नाम नहीं लिए हैं रेडियो पर, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अभी कभी रेडियो पे लिया जाए तो आप अपना नाम बस बता दीजिए मुझे व्हाट्सएप करके, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर आपको दे देती हूँ 3311106 3, एक बार वापस से 3311106 3। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए अगला गाना शुरू होने से पहले। जितने भी नाम मुझे देखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। चलो क्विकली नाम भेजो लिख के, नोआ, नबील कुरैशी, जुनेद, सजाद, वाजिद शेख, फयाज अली, खेमराज, आदिल, दानिश शेख, वसीफ जी, थैंक यू सो मच, विष्णु जी, थैंक यू सो मच, गुरशरण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जिन जिन के नाम ले लिया ना वो दोबारा नाम मत लिखो बेचारे, दूसरे नंबर आने दो यार। संजीजा जी थैंक यू सो मच, पाली जी थैंक यू सो मच, शाहबाज अली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, निरूपा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सूरज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रहीम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो, फिरोज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, किसी ने माशाल्लाह लिख दिया थैंक यू सो मच, बाली जी थैंक यू सो मच अपना नाम लिखो यार, उमेर अशरफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हाजरा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, संधू साहब जी थैंक यू सो मच, हशमत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, इदरीस जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अरसलान, सना थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अहमद हुसैन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, किसी ने सिमरन लिख के भेजा दोस्त अपना नाम लिखो, पटेल साहब थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अगला गाना शुरू होने वाला है क्विकली नाम लिखो, हामिद जी थैंक यू सो मच, कृषु जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, महफूज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ, सोनू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अब जिन जिन लोगों ने नामे दृश्यम बोली, मैं नहीं अब देख रही आप लोगों के नाम, अगर आपने अपना नाम सुन लिया तो थैंक यू लिख दीजिए एंड साथ में अपना फेवरेट इमोजी बना दीजिए। एंड आई लव दिस ट्रैक यार, इसका म्यूजिक परफेक्ट है इस टाइम के लिए। याद

0: एसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: दिल उल्लू का मट्ठा है यार। स्टूडियो की घड़ी पे
1: टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय दानातल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
0: हां जी मैं कह जी सोनियो के दादी की हाल चाल सिमरन गौर है तोडे नाल।
2: प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा।
0: 9 बजे से पहले दोस्त

0: गाने चल रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक एक नंबर वाला गाना आपको पहचानना है।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग में मैं आपको एक चुटकी वर्ड सॉन्ग सुनाने वाली हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है। आप अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो, इन केस आपको 2-3 बार रिप्ले करना पड़े ताकि आपका दिमाग अगर नहीं लग रहा तो लग जाएगा। सो ऑन है रिकॉर्डर, चलाऊ मैं, सुनो। कौन सा गाना लग रहा है आपको, जाना पहचाना है ना? बिल्कुल यार, बड़ा पॉपुलर गाना है। अगर आपको पता लगे गाना कौन सा है, आप गा के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं, बट लिखिएगा मत, वॉइस नोट भेजिए। हे सिमरन, एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ अपना नाम बताइए और गाना बताइए और भेज दीजिए 3311063 पर। एक बार वापिस से सुना रही हूँ। लिखना नहीं है, क्यों लिख रहे हो दोस्तों? अरे नेहा जी, आप तो अच्छा गाती हो यार, गा के बताओ।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

जी सुनियों की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल 8:30 स्टूडियो की घड़ी पे कितनी दफा

0: आप में भी बात बढ़िया है यार, खेल रहे हैं हम
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: और मैंने आपको एक चुटकी पर गाना सुनाया था, और क्या आपने गाना पहचाना?
3: हाय सिमरन, गाना ओम शांति ओम से है, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं।
0: हाँ जी,
4: आंखों में तेरी अजब सी खुमारी है, दिल को बना दे जो पतंग। बस इतना तक आके भूल गया।
0: कोई बात नहीं।
4: ओ आंखों में तेरी अजब सी हवाएं हैं,
0: हवाएं हैं, ओके।
4: दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं।
0: अपनी मर्जी से गा रहे हैं सब, कूल यार।
5: आंखों में तेरी अजब सी

0: क्या बात है यार।
1: Hi Simran, this is Pradeep here. ये गाना जो आपने बताया है इसके लिरिक्स को जिस तरह है, हालांकि मुझे पूरा नहीं आता है, बट फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा।
0: अरे इरशाद,
1: आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं।
0: स्वीट, आप साथ में चुटकी भी बजा रहे थे यार, एकदम फुल ऑन स्वैग करके आप लोगों ने गाना जो है वो गाया है यार। लिरिक्स हम सब के ऊपर नीचे होते हैं, आपके तो फिर भी अच्छे, मेरे तो बड़े गंदे लिरिक्स रहते हैं। मैं कुछ भी गाती हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ गाती हूँ, और आई लाइक योर कॉन्फिडेंस यार, मजा आ गया। सबने गाना बिल्कुल सही पहचाना है। मैं बताती हूँ लिरिक्स कैसे है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं जवाब बताती, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग वो सांसे तेरी वो हवाएं हैं। आपको क्या लगता है, मैंने 10/10 लिरिक्स जो है वो गाए, या फिर मैंने लिरिक्स में कुछ गलती की है? आप मुझे जज कर सकते हैं, इट्स ओके, मजा आएगा। 3311063 पर सिमरन कौर आपके साथ, जियो विनाश।

0: एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ.
3: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

और ये प्यार फुटबॉल के लिए है यार। जी मैं जी सुने हो कि दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल। सो फुटबॉल का प्यार आप सबको पता है कि अपने कतर में भी है, लेकिन कतर के बाहर भी जो फुटबॉल का प्यार जो है वो लोग समझ रहे हैं और छुट्टियां कर रहे हैं। जी हाँ, आज आपको पता है कि अर्जेंटीना एंड स्पेन के बीच में फिनाले होने वाला अपने कतर में, ये 10 बजे है, लेकिन इंडिया में जो है वो 12:30 बज जाएंगे। अब क्या है कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज केरला मणिपुर एंड मेघालय कल के दिन जो है वो स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी क्लोज रहने वाली है, क्योंकि उनका ये मानना है कि स्टूडेंट्स जो है वो लेट तक जग के फीफा का फिनाले जो है वो एंजॉय कर सके। वाह यार वाह, हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया। सो यार छुट्टियां जो है वो ये बढ़िया है यार लोगों के लिए। जब इंडिया की बात करें है ना, मंडे जो है ना वो बहुत ऐसा होता है यार संडे के बाद मंडे आ गया, लेकिन अभी बैक टू बैक 2 छुट्टियां होंगी तो आपके मजे जो है वो हो चुके हैं। अभी फिलहाल मैं भी इस मजे के लिए जो है वो निकल रही हूँ। सो फाइनल मैच आप कहाँ पे देखने वाले हैं बताइएगा मुझे। बहुत सारे फैन जोन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यस वो है कि आपको बहुत जगह पे मैच की स्क्रीनिंग जरूर मिल जाएगी।

0: So, चाहे आप आज की स्क्रीनिंग बाहर देखने जाएं या घर पे देखें, एंजॉय करिए, हैव फन. आई नो सबके सुबह ऑफिसेज है, मेरा थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि मेरी इवनिंग शिफ्ट होती है, बट दैट्स ओके. कल मिलते हैं शाम को 5 बजे. खांदे बिंदर ऐश कर दे रो, चेहरे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

So, आज की कहानी शुरू होती है 1995 से, जब दुनिया में इंटरनेट नहीं आया था। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, उन्होंने एक किताब लिखी थी, द रोड अहेड। उस किताब में उन्होंने फ्यूचर की दुनिया इमेजिन की थी। उन्होंने लिखा था कि एक दिन लोग घर बैठे शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, डिजिटल पेमेंट्स होंगे और कंप्यूटर हर इंसान की लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। You are listening Radio Olive 106.3 FM. A very good evening. You are listening Midnight Lounge with me, Muskan. और आज मैं एक किताब की नहीं बल्कि उस किताब की एक कहानी की बात कर रही हूँ जो कि बिल गेट्स की किताब है। सो उस वक्त लोगों को ये सब ना बहुत साइंस फिक्शन जैसा लग रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल गेट्स खुद एक इंटरव्यू में मानते हैं कि उनकी किताब की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन गलत निकली। उन्होंने इंटरनेट की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उन्होंने सोचा था फ्यूचर कंप्यूटर्स बदलेंगे, लेकिन असल में दुनिया को वेबसाइट और इंटरनेट नहीं बदल दिया। और इसीलिए बाद में उन्होंने किताब का अपडेटेड वर्जन लिखा। कितनी खूबसूरत बात है ना, दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग भी फ्यूचर को परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। शायद इसीलिए जिंदगी का मजा भी इसी में है कि हर नया दिन हमें सरप्राइज देता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि ऐसी कौन सी एक किताब है जिसने आपका दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

So, कभी नोटिस किया है कि दोहा का असली मूड जो है वो शाम को शुरू होता है। दिन भर की गर्मी के बाद जैसे ही सूरज ढलता है कॉर्निश पर फैमिलीज आ जाती हैं, बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, सूख वाकिफ की गलियों में चाय की खुशबू जो है वो फैल जाती है और कटारा के वॉकवेज पर लोग बस चलने के लिए निकल पड़ते हैं। So, एक ट्रैवल राइटर ने दोहा के बारे में लिखा था, सम सिटी स्लीप्स आफ्टर सनसेट, दोहा स्टार्ट टॉकिंग। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि और शायद ये बात हर उस इंसान को फील की जा सकती है जो यहाँ पर रह रहे हैं बाहर से आके। दिन ऑफिस का होता है लेकिन रात अपनी, मतलब यू कैन इंजॉय योर नाइट्स इवनिंग्स, फोन पर घर बातें करना, फ्रेंड्स के साथ चाय पीना या बस कॉर्निश के सामने बैठ कर समुंदर देखना। कतर में ना रहने वाले हजारों लोगों के लिए रात ही वो वक्त है जब वो अपने शहर से कनेक्ट करते हैं। तो बताइए कि आपके लिए दोहा का फेवरेट नाइट स्पॉट कौन सा है जहां जाकर लगता है कि यार दिन का स्ट्रेस ना खत्म हो जाता है, मतलब हर वो चीज जो आपको लगती है दिन भर बहुत डिफिकल्ट है शाम को आसान लगने लग जाती है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। नंबर है 3311063।

सो अब थोड़ी सी बॉलीवुड की बात करते हैं. इट वॉज अ ब्यूटिफुल मूवी फ्रॉम 1995, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. राज और सिमरन जो है वो यूरोप ट्रिप पर होते हैं. अब एक सीन में ना शाहरुख खान वहां पर कबूतरों के बीच में खड़े होते हैं और उनकी स्माइल इतनी नेचुरल लगती है कि लगता है सब कुछ परफेक्टली प्लान था. लेकिन फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने बाद में बताया कि कबूतरों का टाइमिंग किसी ने कंट्रोल नहीं किया था. बर्ड्स अचानक से उड़ने लगे और शाहरुख खान ने सीन को रोका नहीं, उन्होंने बस उस मोमेंट के साथ एक्ट किया. डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को लगा कि ये स्क्रिप्टेड नहीं था और ये कितना अच्छा हो गया, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि बहुत ही लाइव शॉट है. और वही शॉट फाइनल में फिल्म में मतलब चलाया गया. कभी कभी ना सिनेमा की सबसे यादगार चीजें यही होती है, परफेक्ट प्लानिंग से नहीं परफेक्ट टाइमिंग से बनती है. बिल्कुल लाइफ की तरह हम प्लानिंग कुछ और करते हैं और शायद हो कुछ और जाता है. सो आप मुझे बताइए आपकी लाइफ का कौन सा अनप्लान्ड मोमेंट है जो आज सबसे खूबसूरत मेमोरी बन चुका है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311106. Stay tuned, Jio.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज, ये है मिडनाइट लाउंज,
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं स्कूल का पहला दिन याद है तो शायद याद आ जाए, लेकिन अगर पूछूं क्या कोई ऐसी बात जो आज तक किसी ने आपसे कही है या आप कह नहीं पाए हो किसी से, उसका जवाब शायद और जल्दी आ जाएगा। इस फीलिंग को साइकोलॉजी में एक इफेक्ट कहते हैं, द नेम इज साइगैनिक इफेक्ट। ओके, 1920s में रशियन साइकोलॉजिस्ट जो है ब्लूमा साइगैनिक, उन्होंने ये नोटिस किया था, एक कैफे के राइटर्स को सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स की डिटेल्स याद रहती है जो अभी सर्व नहीं हुए थे। जैसे कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ, डिटेल्स दिमाग से निकल गई। तब उन्होंने रिसर्च शुरू की और पता चला कि हमारे दिमाग में इनकम्प्लीट चीजों को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखा जाता है। शायद इसीलिए अधूरी मोहब्बत, अधूरी बातें, अधूरी किताबें और कभी आसानी से हम भूलते ही नहीं है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपकी लाइफ में ऐसे अनफिनिश्ड स्टोरीज जो हैं जिसे अगर एक चांस मिले तो आप कंप्लीट करना चाहोगे तो वो क्या होगा? 3311 1063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. दुनिया के इतने सारे फेमस राइटर्स कैफेज में ही क्यों लिखते हैं? सबसे फेमस एग्जाम्पल है जेके रॉलिंग. अब 1990s में जब वो हैरी पॉटर लिख रहे थे तो उनके पास अपना ऑफिस नहीं था. सो कभी एडिनबर्ग के द एलिफेंट हाउस कैफे और तो कभी दूसरे कैफेज में बैठकर वो किताब लिखते थे. उनकी जो बेबी स्ट्रॉलर थी वो उनके पास सोती थी और वो कॉफ़ी के साथ हॉगवर्ट्स की दुनिया लिख रही होती थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन था, कैफे में अकेले बैठकर वो लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा सुकून फील करती थी. और सिर्फ रॉलिंग ही नहीं, ऑथर हैं और भी बहुत सारे जिन्होंने पेरिस के कैफे में बैठकर और अलग अलग जगहों पर किताबें लिखी हैं, चाहे वो जेके रॉलिंग्स हो, JRR टॉल्किन हो, और ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं. कभी कभी क्रिएटिव आइडियाज़ ना शांति में नहीं आते, लोगों की हल्की सी आवाज़ों के बीच में आते हैं. शायद क्रिएटिविटी को कंप्लीट साइलेंस नहीं चाहिए, बस एक कंफर्टेबल कॉर्नर चाहिए. तो आप बताइए, अगर आपको एक किताब लिखनी हो तो आप कैफे चूज करोगे या फिर घर का कोई कमरा या फिर समुंदर के सामने बैठ के बिल्कुल एकदम बीच के पास जो बेंचेस लगी रहती है वहां पर बैठोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज. 3311 1063 इज माई नंबर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

आज मैं आपको जापान की एक छोटी सी लाइब्रेरी की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है, जब कोई बच्चा पहली बार लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेता है तो उसे सिर्फ लाइब्रेरी कार्ड नहीं दिया जाता, उसके लिए लाइब्रेरियन खुद एक किताब चूज करता है और उस किताब को गिफ्ट की तरह रैप करके वो उसे देता है। उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा होता है, ओपन व्हेन यू आर रेडी। सोचिए मतलब हर चीज कितनी थॉटफुल है वहाँ पे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। हर जगह की अपनी एक कहानी है, हर जगह की अपनी एक नई चीज है जो हम सीख सकते हैं। सोचिए कोई नहीं जानता उस रैपिंग के अंदर कौन सी किताब है, बस ट्रस्ट होता है। इससे शायद ये कहानी इस इंसान के लिए होती है कि कितनी खूबसूरत सी बात है ना, आज हम ऑनलाइन रिव्यूज देखकर बुक्स चूज करते हैं। मूवी देखने जाते हैं तो पहले पूरा ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके रिव्यू पढ़ते हैं, उसके बाद मूवी देखने जाते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे अच्छी कहानी वो होती है जो हमने प्लान ही नहीं की होती। शायद लाइफ भी एक रैप्ड बुक की तरह है, जब तक खोलते नहीं है तब तक पता नहीं चलता अंदर कितनी खूबसूरत कहानी हमारा इंतजार कर रही है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर कोई लाइब्रेरियन आपके लिए बिना बताए एक किताब चूज करे तो आप उस सरप्राइज को एक्सेप्ट करोगे या पहले उसका ट्रेलर जरूर देखोगे, टाइटल पढ़ोगे कि भाई क्या है इसमें, इसके अंदर क्या नहीं है और क्या ये मुझे पढ़नी चाहिए, मेरे किसी काम की है या नहीं। सो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप लोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. आज ना ट्रैफिक की बात करते हैं लेकिन रोड्स की नहीं, कैनाल्स की. आपने वेनिस का नाम तो सुना ही होगा, इटली का वो शहर जहाँ पर कार्स नहीं चलती, सिर्फ बोट्स चलती हैं. और मज़ेदार बात यह है कि एक बार वेनिस के ग्रैंड कैनाल में इतनी ज़्यादा जो गंडोला राइड्स होती हैं वो चालू हो गई, ये वाटर टैक्सीज इकट्ठी हो गई, कि वहाँ पर वाटर ट्रैफिक जैम हो गया. कैन यू इमेजिन, ना कोई हॉर्न की आवाज़, ना कोई गुस्सा, बस लोग अपनी बोट्स पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे. कोई टूरिस्ट फोटो ले रहा था, कोई म्यूजिशियन अपनी बोट पर गाने बजा रहा था, और कुछ लोग तो उस ट्रैफिक जैम में भी मज़े कर रहे थे. सोचिए, हमारे यहाँ पर ट्रैफिक अगर लग जाता था इंडिया में जब हम थे तो लोग परेशान हो जाते थे, ऐसा लगता था कि गुस्सा आ रहा है सबको. पर धीरे धीरे कुछ शहरों ने हमें ये सिखाया कि भाई दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां ट्रैफिक जैम भी पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था. शायद प्रॉब्लम वही होती है लेकिन उसे देखने का ना नजरिया थोड़ा सा अलग होता है. सो अगर आपके मैं बात करूं ना, आपको एक दिन के लिए दुनिया के किसी भी एक शहर में घूमने का चांस मिले तो आप कहां जाना पसंद करोगे? टोक्यो, वेनिस, पेरिस, या फिर आपको लगता है नहीं यार दोहा ही बेस्ट है? जैसे मुझे लगता है, मुझे लगता है नहीं यार, मतलब यहां पे सब कुछ देखने को मिल जाता है, सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, सब कुछ यू नो यू कैन एक्सपीरियंस. सो आपको क्या पसंद है बताओ मुझे. 3311063 पर यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

चलिए आज की रात का आखिरी थॉट है। हर इंसान के पास हजारों कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लेकिन कुछ शब्द हम कभी नहीं भूलते। और एक ऑथर ने लिखा था कि पीपल मे फॉरगेट योर एडवाइस बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ योर वर्ड्स मेड देम फील। सो कभी किसी टीचर ने कहा था आई एम प्राउड ऑफ यू, यू नो किसी दोस्त ने आपसे कहा होगा कि यार मैं हूं ना तेरे साथ, या घर से निकलते वक्त मम्मी ने सिर्फ इतना कहा होगा कि ध्यान से जाना, बस 3 या 4 वर्ड्स, लेकिन उनकी वार्म्थ जो थी ना वो सालों तक आपके साथ चलती है। शायद प्यार हमेशा बड़े स्पीचेस में नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ 3 लफ्जों में होता है। तो आज की रात का आखिरी सवाल है कैसे कौन से 3 या 4 वर्ड्स हैं जो किसी ने आपसे कभी कहे थे और आज तक आपने भूले ही नहीं है। सो आई विल से कि कल फिर मिलेंगे, अभी के लिए आई हैव टू से गुड नाइट एक और कहानी के साथ, क्योंकि हर रात सिर्फ गुजरती नहीं, कुछ नई चीज़ें सिखा कर जाती है आपको। सो वी विल टॉक अबाउट न्यू स्टोरीज, न्यू म्यूजिक, तब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।